एफएमएन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज सोमवार है। सख संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि तदनुसार 8 जून सन 2026 सवेरे के ठीक 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों

0: में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तीन दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी अलवर के इसका चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
3: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो और किसी को कभी दुख ना सहना पड़े। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्री रामचरितमानस गान भाग 213। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग 8। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खसनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री डिंपल कापाड़िया पर। 10 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के।

सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री डिंपल कापाड़िया पर। 10 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग। 11 बजे रंग तरंग। 12:05 पर यादों के महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी।

2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। 3:00 सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली। 4:00 सुनिएगा मधुमेह कारण और बचाव, डॉक्टर कुणाल मेहता से बातचीत सुनिएगा। 5:00 छाया गीत 5:30 पर, तराने नए पुराने।

6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता। आपको फिर से बता दें, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनेंगे श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग 8। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खसनेस, प्रस्तुति मनीषा जैन की। शाम 7 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा। शाम 7:45 पर स्मृतियों के स्वर। शाम 7:45 पर स्मृतियों के स्वर इसके अंतर्गत सुनेगा सेवानिवृत्त सहायक निदेशक अनीता वेस्ली पटेल से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। हवा महल में रात 8 सुनिए झलकी यस सर, लेखक प्रकाश शुक्ला, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। 8:15 पर चित्रलोक। 9 सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार। रात 9:30 आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर। 10 छायागीत। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान भाग 213।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गईं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। इस श्रृंखला की आज सातवीं कड़ी।
1: रविंद्र जी, अब तक हमने तीन ताल, रूपक, एक ताल और झपताल, शास्त्रीय संगीत में उपयोग में लाए जाने वाले इन तालों की बात की
2: जी।
1: इस पर आधारित फिल्मों में जो गीत हुए हैं उनकी चर्चा की। अब थोड़ी चर्चा ललित संगीत में जो उपयोग किए जाते हैं ताल और उन पर आधारित जो फिल्मी गाने हैं उनकी बात करते हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे आप?
2: अभी ये जो है, जैसे तीन ताल, रूपक, एक ताल, झपताल, ये ख्याल गायन में इनका प्रयोग करते हैं
1: जी,
2: संगत के लिए, और उसमें विलंबित भी होता है, मध्यलय भी होती है और द्रुतलय भी होती है
1: जी।
2: अभी शास्त्रीय संगीत के अलावा हमारे भारतीय संगीत में उपशास्त्रीय संगीत है, तो उपशास्त्रीय संगीत जो है वो उसकी भी काफ़ी बड़ी विधा है और उसमें भी कई महान कलाकार जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है
1: जी।
2: तो ये जो उपशास्त्रीय संगीत है इसमें ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, बारामासा ऐसे कई सारे प्रकार है
1: जी।
2: तो ये जो प्रकार है इसमें उपयोग में लाए जाने वाले जो ताल है
1: जी,
2: उसमें प्रमुखता है कहरवा और दादरा। तो कहरवा जो है वो कहरवा फिल्मी गीतों में तो काफ़ी गीतों में वो

0: है, मतलब अनगिनत गीत है जिसमें कहरवा बजाया गया है, और कहरवा का एक अपना खुद का जो विशेषता है, कहरवा की विशेषता, मतलब जैसे अब हम लोग अगर तीन ताल का उदाहरण लेते हैं तो तीन ताल है 16 मात्रा
1: जी।
0: मतलब सम में आने के लिए हमको 16वीं मात्रा तक इंतजार करना होगा
1: जी।
0: कहरवा है 4 मात्रा, तो 4 मात्रा धागे न तीन अक धीन, तो ये हो गया फिर आसान। तो इसको इसलिए हम लोग ललित संगीत इसलिए कहते हैं कि वो उसमें सुलभता है, आसानी है। तो सुलभता आसानी होने की वजह से कहरवा में अनगिनत गीतों का निर्माण हुआ है।
1: और अलग अलग गीतों में रविंद्र जी कहरवा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं।
0: हाँ, कई सारे रूप है
1: जी।
0: तो इसमें हम लोग जो शुरू में बात कर रहे थे कि पैटर्न के बारे में, पैटर्न होते हैं
1: जी,
0: तो अभी कहरवा जो है वो केवल ये मूल
1: ये उसका
0: कहरवा है, धागे नती नक धीन
1: जी।
0: अब वो जो कहरवा है वो गीतों के साथ में कई रूप बदल बदल के आया है, और हर गीत में हमको एक नया कहरवा का रूप देखने को मिलता है
1: जी।
0: वो पैटर्न की वजह से है। तो ये पैटर्न जो होते हैं वो पैटर्न तो गीतों के अनुसार कई सारे हैं, एक हाथ दो मैं आपको अभी उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ
1: जी।

0: ऐसे केरवा के कई सारे रूप
1: क्या है, बात है,
0: और इन सारे रूपों में हमको गीत सुनने को मिलते हैं। हम सुनते हैं गीत तो मतलब ऐसा कहने को मन नहीं करता कि ये केरवा बज रहा है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं, वो तो उसका इतना सुंदर सुंदर रूप देखने को मिलता है कि बस उसको केवल सुनते जाए, वो उसका कोई नाम न दे हम
1: जी,
0: लोग
1: जी। तो ये हर अलग ढंग में जो केरवा बजा है और उसका अलग रूप हमारे सामने आता है
0: जी।
1: तो ऐसे दो गीतों की झलक सुन लेते हैं
0: जी।
1: कुदरत फिल्म का गीत है तूने और रंगीले क्या जादू किया, लता जी के स्वर में, और दूसरा गाना है मिलन फिल्म का सावन का महीना पवन करे शोर। इन दोनों गीतों में केरवा अलग अलग ढंग से बज रहा है, तो ये जो इसकी खूबसूरती है, ये जो निरालापन है, सुनते हैं इन दोनों गीतों की झलक।

0: विविधता की विविधता जो देखने को मिली इन गीतों की झलक में श्रोताओं, इसके बाद रविंद्र जी से पूछना चाहेंगे कि कहरवा ताल का कोई और भी प्रकार है जिसे फिल्म संगीत में प्रयोग में लाया गया है?
1: हाँ, फिल्मी गीतों में लाया गया एक कहरवा का प्रकार है जिसको हम लोग महाराष्ट्र में धुमारी ताल कहते हैं। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश या अन्य भागों में इसको कहरवा ही कहते हैं। तो कहरवा का ये जो आविष्कार है ये इसकी महाराष्ट्र की थोड़ी सी जो पार्श्वभूमि है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर मैंने कहा कि महाराष्ट्र में नाट्य संगीत की परंपरा थी,
0: जी जी,
1: तो वैसे ही महाराष्ट्र में कीर्तन की एक परंपरा रही है, दीर्घ परंपरा है ये, बहुत बड़ी परंपरा चलती आई। तो ये कीर्तन जो होता है इसमें एक धुमारी ताल का प्रयोग होता है, तो वो जो प्रयोग है, तो कीर्तन में अक्सर जो कीर्तन करने वाले हैं वो

0: ये कीर्तन परंपरा में इस तरह का ये ताल
1: जी जी
0: बजाया गया, तो उसका ही सुगम स्वरूप जो है, हाँ, ललित स्वरूप वो

0: वाह,
1: ये कहरवा का ही एक अंग आ गया इसमें। तो इस अंग को लेकर भी फिल्मों में गीत बनाए गए हैं और वो काफ़ी अच्छे गीत है
0: जी,
1: लोगों ने बहुत पसंद किए हुए गीत है।
0: तो रविंद्र जी, ये जो एक कहरवा का रूप है जिसे धुमाड़ी कहा जाता है, क्या फिल्म संगीत में इसका उपयोग हुआ है?
1: हाँ बिल्कुल हुआ है, और मतलब वो उदाहरण बताने के लिए ही मैंने अभी उस ताल का जिक्र किया।
0: हाँ।
1: कि धुमाड़ी का प्रयोग जो है वो आप सब लोग जानते हैं, गाना अजहुन आए बालमा
0: सावन
1: बीता जाए, तो इसमें जो धुमाड़ी जो हम लोग महाराष्ट्र में जिसे कहते हैं,
0: हाँ,
1: वो उसमें सुनने को मिलता है।
0: क्या बात है, सांझ और सवेरा फिल्म का बड़ा ही सुंदर गीत है, राग मधुवंती पर आधारित।
2: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार अलवर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज है 8 जून और आज के इस दिन को हम आकाशवाणी स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन आकाशवाणी की शुरुआत 8 जून 1936 को हुई थी, इसलिए हर साल 8 जून को आकाशवाणी स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2026

26 में यह 90 साल पूरे कर रहा है, यानी कि आज आकाशवाणी को पूरे 90 वर्ष हो चुके हैं। इसी विषय पर आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे। उससे पहले सुनवाते हैं आपको एक गीत।

श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया, आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे करने की वर्षगांठ मना रहा है। 8 जून 1936 को इसी दिन भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर अखिल भारतीय रेडियो ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया।

यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण को दर्शाता है, जब एक ऐसी आवाज का जन्म हुआ जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। 7 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की तत्कालीन आधिकारिक पत्रिका द इंडियन लिसनर के पहले पृष्ठ पर दुनिया को AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो की घोषणा की गई और उस जादुई शुरुआत से ठीक एक दिन पहले ये खबर छपी। समय का वो पल, आकाशवाणी का ये पल ठहर सा गया। एक ऐसी विरासत जो आज भी जीवित है। आकाशवाणी का साधारण सा दिल्ली स्टेशन एक ऐसा केंद्र बन गया जहां आवाजों को पंख मिले और इतिहास को एक माइक मिला। इन शांत दीवारों से ऐसी गूंज निकली जिसने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से लेकर आज तक अविस्मरणीय बना हुआ है। श्रोताओं, स्वतंत्रता के बाद AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। श्रोताओं, आकाशवाणी नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था जिसका अर्थ है आसमान से आने वाली आवाज। आकाशवाणी भारत का सबसे पुराना और बड़ा रेडियो नेटवर्क है। ये देश के दूर दराज इलाकों तक खबर, संगीत, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाता है और आज भी गांव और कम इंटरनेट वाले क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए ये दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है जो भारत के कोने कोने तक समाचार, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाता है। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और भी करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक और गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली सफर के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है और आज है आकाशवाणी स्थापना दिवस। श्रोताओं, आकाशवाणी का यह स्थापना दिवस भारत में रेडियो प्रसारण के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी आज भारत के कोने कोने तक अपनी पहुंच बनाए हुए हैं, जिसके प्रमुख माध्यम है 114 प्राइमरी चैनल्स, 92 लोकल रेडियो स्टेशंस, 44 विविध भारती स्टेशंस, 25 FM रेनबो और 4 FM गोल्ड चैनल्स। श्रोताओं, वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को जब आधिकारिक रूप से आकाशवाणी नाम दिया गया, तब से यह अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को जीवित रखते हुए देश की सेवा कर रहा है। भारत के इस प्रमुख सार्वजनिक प्रसारक ने 23 भाषाओं और 189 बोलियों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का प्रसार करके देश की लगभग 98% आबादी को जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है। अपनी 90 वर्ष की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रसार भारती और आकाशवाणी द्वारा कई विशेष आयोजनों और प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई, जैसे राष्ट्रीय सिग्नेचर ट्यून प्रतियोगिता, वॉकेथन और जन भागीदारी प्रतियोगिता आदि। श्रोताओं, वक्त है एक गीत सुनने का, तो लीजिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे आकाशवाणी स्थापना दिवस के विषय पर। आकाशवाणी ने स्वतंत्रता संग्राम, सरकारी घोषणाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ी भूमिका निभाई है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की घोषणा रेडियो के माध्यम से पूरे देश में सुनाई गई। उस समय रेडियो ही सबसे बड़ा सूचना का माध्यम था। आज के समय की बात करें तो आकाशवाणी के 400 से ज़्यादा स्टेशंस हैं। अलग अलग भाषाओं में कार्यक्रम चलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और पुराने गानों को बढ़ावा देने में आकाशवाणी का बड़ा योगदान रहा है। बहुत से बड़े कलाकारों को आकाशवाणी से ही पहचान मिली।

है। श्रोताओं, ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज बुलेटिन बहुत विश्वसनीय माना जाता है। हर घंटे खबरें प्रसारित होती हैं। गांव में आज भी लोग रेडियो से समाचार सुनते हैं। और आज के समय की बात करें तो अब आकाशवाणी सिर्फ रेडियो तक ही सीमित नहीं है, यह मोबाइल ऐप और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। आप भी इसका ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है न्यूज ऑन एयर ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप किसी भी शहर के आकाशवाणी केंद्र से लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी पर कुछ खास प्रोग्राम भी आप सुनते हैं, जैसे मन की बात, विविध भारती सेवा कार्यक्रम, समाचार और किसानों के कार्यक्रम, बच्चों के कार्यक्रम, महिलाओं और युवाओं के कार्यक्रम। इन खास कार्यक्रमों की वजह से आज आकाशवाणी को हर कोई सुनना पसंद करता है, हर कोई सुनना चाहता है। सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

0: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमने आपसे बात की आकाशवाणी स्थापना दिवस के विषय पर। आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो चैनल नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास और सूचना का मजबूत स्तंभ है, जो 90 सालों के बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि सुनते रहो, जुड़ते रहो आकाशवाणी के साथ। इसी के साथ अब दीजिए कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के 9 दशक, जी हाँ, पूरे 90 साल। आकाशवाणी आपके भरोसे का साथी, आपकी आवाज, आपके दिलों की धड़कन, निरंतर सेवा में समर्पित। ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और संस्कृति का ये है अथाह सागर। पीढ़ियों से सदा है हमारा मार्गदर्शक, गांव से शहर तक है हर घर में इसकी गूंज। आकाशवाणी के 90 वर्ष, ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये है हमारी विरासत, हमारा गौरव। सुनते रहिए आकाशवाणी सदाबहार, सदा आपके साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चरण से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये फिल्म में, सौतन फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर को। गीत के बोल लिखे थे सावन कुमार ने, संगीत था उषा खन्ना का।

बेताब फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत था आर डी बर्मन का। अगला गीत सुनने से पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

संगम फिल्म में अभी आपने सुना मुकेश को। गीत रचना थी शैलेंद्र की, संगीत था शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अधिकार फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में।

शुद्ध अधिकार फिल्म का ये गीत लिखा था रमेश पंत ने, संगीत था आरडी बर्मन का, आवाज़ किशोर कुमार आशा भोसले की। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आपने सुना प्यार झुकता नहीं फिल्म से। आवाजें थी लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की। गीत रचना SH बिहारी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत पैरेलाल की। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।

0: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए

0: 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
0: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
4: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन

0: करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का असर इसका चैनल है। श्रोताओं, सवेरे के ठीक 8:15 हो रहे हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हरिहरन की गायी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की गाई गजलें। इसी के साथ हमारा सुगम संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर के साइस्का चरण से बोल रहे हैं। लीजिए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग

0: कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से। अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
0: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो

0: और उस दीवार का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
1: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: वाह, बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौवा, अपनी रोटी गंवा बैठा ना। क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे ही गंदा

0: दिया।
1: ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
2: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
3: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
4: मंगला।
5: हाँ।
4: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
5: ठीक है।
4: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना।
5: हाँ हाँ।
4: उठाकर मुझे दे।
5: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
4: हाँ।
5: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
2: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
4: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
5: अरे वाह।
4: और ये इसकी पूंछ।
5: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
4: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
5: लेकिन मुझे तो अरे, अरे मगर उफ,
4: अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
5: ठीक है।
4: अब बना।
3: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
5: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
4: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
5: ठीक है।
4: चल चल चल चल चल। हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
5: चल चल
2: चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
6: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
3: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
6: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
7: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

उच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहाँ रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन ये भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, माँ से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टातिरिपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेंसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में 2 हाथी तक दिए।
0: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र

0: ही नहीं बनाए बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी अलवर के इसका चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना, पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सीटों पर जीत के आधार पर अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं। भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित कर

0: देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा समावेशी विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और सक्रिय नागरिक भागीदारी द्वारा निर्देशित होना चाहिए। युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री बिरला ने कहा कि शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 7 से 8 सालों में बढ़कर लगभग 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। ये अर्थव्यवस्था वर्तमान में 9 अरब डॉलर की है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में दृष्टिकोण को लेकर जो बदलाव आया है वह बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव छोटे शहरों से आने वाले सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स की बढ़ती संख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है।
1: यावत् चतस्रः प्रदिशश्चक्षुर्यावत् समश्नुते तावत् समैत्विन्द्रियं मयि तद्धस्ति वर्चसम्।
2: चारों दिशाओं के विस्तार व नेत्रों की दृष्टि शक्ति की जागरूकता से युक्त ऐसी समृद्धि हमें प्राप्त हो जहाँ प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में रहकर पर्यावरण का संरक्षण हो और समस्त जीवन का सतत कल्याण सुनिश्चित हो।
0: भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सीमांत जिलों में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सरहदी जिले जैसलमेर की जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध निर्माणों का सर्वे कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई थी।
3: मंत्री महोदय ने, सीएम महोदय ने जो बैठक ली थी उसमें पांचों जिले जो है सीमावर्ती जिले उनके कलेक्टर एसपी के साथ बैठक थी, जिसमें बहुत क्लियर कट ये निर्देश दिए कि 0 से 15 किलोमीटर के दरमियान किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट है कि सबसे पहले तो उसका हमें पूरा सर्वे हमारे पास होना चाहिए और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि जो नियम विरुद्ध है तो उस पे कार्रवाई करने के लिए दिवाली पर्व से पहले इसमें निर्देश दिए गए। निर्देश क्लियर है कि एंक्रोचमेंट हटने की कार्रवाई करनी है और उससे पहले एक सर्वे का कहा गया है, तो सर्वे के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को हमने यहाँ से पाबंद कर दिया गया है कि सबसे पहले सर्वे है, सर्वे स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा और जैसे स्टेट से निर्देश मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। देश विदेश के 566 शहरों में एक पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा ली जाएगी। एनटीए की जानकारी के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवार अब अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए जयपुर पुलिस और जिला प्रशासन सतर्क मोड पर है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव प्रचार

0: द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कमिश्नरेट क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी, डंडा लेकर चलने पर रोक रहेगी। प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भड़काऊ, भ्रामक या सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण पर भी नजर बनाए हुए है। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थम जाने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से 11 जून तक तापमान में बढ़ोतरी होने और पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस बीच पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 11 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर सहित प्रदेश के कुछ शहरों में हल्की बारिश हुई। अजमेर में भी कई जगह पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर रात धूल भरी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई।
1: कल दिन भर की गर्मी और उमस के बाद देर रात करीब 2 बजे से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं और तेज मूसलाधार बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहर में कई जगह पेड़ और सोलर पैनलों की प्लेटें होर्डिंग उड़ गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालांकि आज सूर्य उदय के साथ ही उमस फिर बढ़ने लगी है। नीलिमा धादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर में कल विशेष अभियान चलाकर करीब 14 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में जिला मुख्यालय सहित उज्जैन, छोकरवाड़ा, वैर, बयाना और रूपवास में ये कार्रवाई की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना, पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं।

रेखा भारद्वाज की आवाज में डेढ़ इश्किया फिल्म का गीत भी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा एक और ब्रेक लिया जाए।

आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है। शिल्पा शेट्टी अपनी खूबसूरती, फिटनेस और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी को जन्मदिन की विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको फिर से याद दिला दें, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर।

धड़कन फिल्म का गीत अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था और नदीम श्रमण ने धुन बनाई थी।

अभी आप सुन रहे थे मलाल फिल्म का गीत ऋत्विक तलाशीघर की आवाज़ थी, प्रशांत इंगोले ने इसे लिखा था, संजय लीला भंसाली का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए सविता सिंह को इजाजत, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, और आज की फनकार हैं खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा डिंपल कपाड़िया। मुझे कुछ कहें।

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम।
2: हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। सबसे पहले तो ये कहना है कि आज है डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे।

0: 8 जून सन 1957 को एक गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल कापाड़िया को सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी में हीरोइन का टाइटल रोल प्ले करने का मौका मिल गया और इस फिल्म ने डिंपल को रातों रात स्टार बना दिया।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा।

जिस तरह रातों रात उन्हें शोहरत मिली, उसी तरह अचानक ही डिंपल ने इस चमक दमक और स्टारडम को नमस्ते कह दिया और उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया।

राजेश खन्ना के साथ अपने वैवाहिक जीवन में डिंपल को दो बेटियां मिली, ट्विंकल और रिंकी। लेकिन डिंपल का वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबा नहीं चल सका।

डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी डिंपल को अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अच्छे जीवन के लिए कोई ना कोई फैसला तो करना ही था। सुस्वाभिमानी डिंपल ने खुद अपने ही बलबूते पर कुछ करने की ठानी और उनके इस फैसले का स्वागत किया फिल्म इंडस्ट्री ने, निर्देशक रमेश सिप्पी ने और उनकी पहली फिल्म के को स्टार ऋषि कपूर ने। 1985 में उनकी कमबैक फिल्म आई सागर।

इस फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया ने अपनी उपस्थिति को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूती से दर्ज किया और हर तरह की फिल्में स्वीकार करने लगी। यानी उस दौर में भी डिंपल ने अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन करने में कोई

डिंपल को 1973 में बॉबी और 1985 में फिल्म सागर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और 1991 में फिल्म दृष्टि के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला। और फिर 1993 में डिंपल ने साबित कर दिया कि उनके अंदर कितनी सशक्त अभिनेत्री छिपी है। फिल्म आई रुदाली।

डिंपल की उल्लेखनीय फिल्में हैं क्रांतिवीर, गर्दिश, दिल आशना है, अजूबा, अर्जुन, आज की औरत, काश, जख्मी औरत, लावा, राम लखन।

0: डिंपल कपाड़िया ने हीरोइन के रूप में अपनी अदाकारी और अपनी खूबसूरती से जो जादू अपने दर्शकों पर चलाया उससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 2009 से उन्होंने जो पारी शुरू की चरित्र अभिनेत्री के रूप में, वो भी कम दमदार नहीं है। लक बाय चांस, तुम मिलो तो सही, दबंग, पटियाला हाउस और कॉकटेल। तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था डिंपल कपाड़िया पर। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
3: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
4: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
3: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
5: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लहरा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
3: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: छांव, कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, हम लाए हैं

0: तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था आपके घर का, क्या माहौल था, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
1: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज़ उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीज़ें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के, मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहाँ पर शहादत हुई रिजांगला में, और वो चीज़ से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं, रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहाँ पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहाँ चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई, और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊँगा जब तक मैं घर जाऊँगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊँ। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए, बोलते हैं यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है, बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पर वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहाँ पर जाके वो जो अपनी मीटिंग ख़त्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
0: जी।
1: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
0: जी।
1: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहाँ पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
0: बिल्कुल।
1: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहाँ पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
0: ठीक है।
1: तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गीत जब तक वहाँ पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है
0: जी।
1: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस। तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है,

0: ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है
1: जी।
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे। ठीक है, अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है, आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे। लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुआ। ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में।
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे, एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी।
1: अच्छा।
0: एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में। और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहाँ बज रहा है, वहाँ गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना
1: जी।
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहाँ पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गंवाए
1: जी।
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गंवाए। लोग एकदम सुनना शुरू किया कि ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे। और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो
1: था।
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको, क्योंकि उनके मन में भी ग्लानी बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानी थी
1: जी,
0: गिल्ट फीलिंग
1: जी।
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है?
1: अच्छा।
0: ये लिखा किसने है
1: जी?
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहाँ के हैं, ये तो बम्बई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बम्बई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को ज़रूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है। हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में, हमारे देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं
1: जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के
0: लक्ष्मीकांत जी।
1: जी
0: वो आए, दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में।
1: अच्छा।
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना। इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूँ कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी
1: जी, जी।
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा, और उनको ये कहते हुए सुना, ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए, और नेचुरली भूल गए।

0: लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए
1: जी,
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहाँ पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों आपने लिखा है, अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं
1: जी,
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रहे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी,
1: बताइए।
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो जाते थे दिल्ली
1: जी, जी जी,
0: तो ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है
1: कि जो होता है
0: अच्छा
1: के लिए होता है जी।
0: उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा, इसी गीत को सुनाए।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं, जैसे आप गाएंगे। फिर वहाँ पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहाँ पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूँगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया
0: जी,
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी,
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है
1: जी।
0: ए मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहाँ पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी, तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले, मेरे वतन के लिए
0: जरूर, जरूर
1: जरा आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए, हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: जी,
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी,
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल लगता

0: था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे।
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे
0: जी।
1: तो ये नहीं है कि कभी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे
0: जी।
1: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास।
0: हाँ हाँ।
1: और कभी कभी ऐसा होता था तो अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे हम लोग खड़े। तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट दे के रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं
0: जी।
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे। हमारे घर पे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
0: जी
1: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए
0: जी, जी।
1: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए
0: जी।
1: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
0: बिल्कुल।
1: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे
0: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू था।
1: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था, न्यूज, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो 4-5 अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
0: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
1: हाँ हाँ, अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार
0: जी,
1: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
0: इतनी भाषाओं के
1: हमारे वहाँ अखबार आते थे
0: और उसे पढ़ा
1: और आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए
0: जी।
1: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती। बीबीसी न्यूज, उनका रोज का सवेरे का 6:45 बजे का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे,
0: हाँ,
1: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
0: तो घर में एक रेडियो था।
1: हाँ हाँ
0: जी,
1: एक नहीं, 2-3 रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
0: अच्छा।
1: जैसे मैंने कहा, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले

0: बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है, तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में।
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था और हर कण कण
0: तो
1: में वो देशभक्ति
0: ये
1: का
0: जो
1: जज्बा था।
0: जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो,
1: वाह
0: अरे ओ रोशनी वालों।
1: वाह, क्या बात है। महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत
0: जी
1: है ये,
0: जी
1: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को। गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी, और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसी, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी
1: उस
0: माहौल में रहते हुए भी,
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: और किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए?
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लहरी ने
0: जी,
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूँ, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो?
1: हाँ, हम
0: जो फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था कविताओं का।
1: हाँ हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ
0: जी।
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी, उसी दौरान उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
0: जी,
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए, कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही, निखिल प्रकृति लह लही विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली थी। और आप अगर सुने एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: यही पैगाम,
1: ये वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए। तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उभाई जा रहा, और कुछ
0: यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते, भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम सुन ले,
1: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है,
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी, तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो वो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंदेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से। मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारे पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
0: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
0: जागृति मिली हमको, जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
1: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
0: जी जी।
1: और लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
0: अच्छा।
1: जब मिल गई आज़ादी, उसके 2-4 साल के बाद उनको लगा कि आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
0: बहुत बड़ा सवाल।
1: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आज़ादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आज़ाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
0: इस देश को रखना मेरे
1: बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से, और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश, आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने

0: वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
1: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
0: हर एक लाइन सुनिए आप
1: जी।

0: को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
1: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही हैं और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
2: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाकया हुआ था
1: जी,
2: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलते मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ, संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपिनियर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं, प्रदीप जी के साथ काम कर सकता हूँ।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। शायर हैं राजेश रेड्डी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ें इन्हीं का संगीत। शब्दकार आर एस हरियाणवी रतन। एल्बम का नाम तस्वीर।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। यूफोरिया की आवाज पलाश और दीक्षांत का लिखा हुआ गाना, संगीत पलाश और डीजे का,

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। कमाल खान की आवाज, संगीत साजिद वाजिद का एल्बम कल रात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना

0: वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। धड़कन फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।
2: दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे।
1: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि निकले एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश के सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे एक अंतराल के बाद।

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 MHz पर। श्रोताओं लीजिए सुनते हैं ये विज्ञापन।

0: एक्साइज स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम विविध भारती से आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म का गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में रानी मलिक का लिखा हुआ गाना। हमने आपको बताया कि आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम के शुरुआती कुछ गाने उन्हीं की फिल्मों से लिए गए हैं।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का भी जन्मदिन है, तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने अब आपको सुनवाएंगे। ये है बॉबी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, विठल भाई पटेल का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अब आपको सुनवाते हैं लेकिन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं। बंटवारा फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, हसन कमाल का लिखा हुआ गाना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम समाप्त होता है। इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: आकाशवाणी सुरीला सफर कार्यक्रम। आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों ने अपने नाम पत्र दाखिल कर दिए हैं। भाजपा के उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने आज अपने नामांकन प्रस्तुत किए। नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उधर कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नकली बीज प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी बीज निगम के निदेशक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। एसीबी ने बताया कि आरोपियों ने एक बीज कंपनी के जब्त बीजों को गुजरात भेजे जाने की एवज में कंपनी से 1,20,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूचना मिलने पर एसीबी की टीम ने आरोपी को बीकानेर के लूण करणसर से बस से उतार गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 85,00,000 रुपए की अवैध धनराशि बरामद की गई। एसीबी ने बीज निगम के निदेशक के घर छापा मारा, जहां से 1,50,000 रुपए की राशि भी जब्त की गई। प्रदेश भर में पीने के पानी की उपलब्धता के लिए चलाए जा रहे अभियानों के तहत 5 मई से 6 जून तक 19,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान हैंडपंप मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज, कम दबाव के साथ पानी और अनिश्चित जलापूर्ति की शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा करीब 7,500 सुधारात्मक कार्यों के जरिए पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया। इस दौरान 6 जून को एक दिन में 3,000 से अधिक कार्य संपन्न करवा के लोगों को राहत दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पेयजल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विशेष अभियान 30 जून तक लगातार जारी रहेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी जयपुर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज शहर के जगतपुरा और मालवीय नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन सख्त कदम उठाए हैं। जेडीए दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और आरएसी का जाप्ता शामिल रहा। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। प्रदेश में हाल ही में आए आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुए विद्युत तंत्र को सुचारू करने के लिए सभी विद्युत वितरण निगम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर भवर लाल डेलू ने बताया कि सरहदी और पश्चिमी जिलों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़, चांदन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद लक्ष्य में बढ़ोतरी किए जाने से किसानों को राहत मिली है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के जिलों में किसान सरकार के इस फैसले से उत्साहित है और मंडियों में गेहूं बेचान के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सौकरिया ने बताया कि जिले का कुल गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़कर 8.75 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591

रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

और न बड़ा होने का घमंड। वो हजारों नदियों का दर्द पीकर भी गमगीन नहीं होता, इसलिए अक्सर टूटे हुए लोग समंदर के किनारे जाते हैं और उससे सीखते हैं कि दर्द पीकर भी कैसे मुकम्मल रहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बारूद फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। इसमें जो आवाज़ है वो लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। ये कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

मन्ना डे की आवाज़ में सीमा फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सागर महासागर के कई ऊंच नीच लहरों में छिपी अनगिनत यादों को, मन की भावनाओं को दिल के गहराइयों से सलाम। मिटने वाली सभी निशानियों का कभी अंत नहीं, सूरज को अपने भीतर समाने वाला सागर अथांग तीर में बंदिस्त होकर भी सभी नदियों का पानी पीकर सीमा नहीं छोड़ता है, ये उसकी खासियत है, अपनी सीमाओं से वो बंधा होता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि समंदर शोर भी करता है और सुकून भी देता है, ऊपर से नीला शांत और अंदर मूंगा मोती तूफान सब छुपाए बैठा है। समंदर की हर लहर आती है, वापस जाती है और कहती है कि फिर आऊंगी। वो बना तो बूंद बूंद से है पर बड़े बड़े जहाजों को भी डुबो देता है। फिर भी न छोटा होने का गम

इस बात को हमें याद ज़रूर रखना चाहिए कि हमारी हदें कहाँ तक है। सागर के किनारे हम जाते हैं, अटखेलियाँ करते हैं, आनंद लेते हैं पानी के आने और जाने का, लहरों का आनंद लेते हैं, वहाँ की जो ठंडक होती है उसको महसूस करते हैं। दूर तक दिखता हुआ सागर, जहाँ उसका कोई किनारा नहीं दिखता है, सूरज डूबता रहता है, वो जो मंज़र होता है बहुत खूबसूरत होता है। क्या हमें इस खूबसूरती को बरकरार नहीं रखना चाहिए? ये प्रश्न अभी हमारे सामने है। जब हम समुद्र किनारे जाते हैं, बहुत सारी गंदगी फैला करके आते हैं, उसे गंदा करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी हदें हैं। तो इस बात को बताता हुआ ये गाना आपने सुना। मैंने आपको बताया कि ऋषि कपूर और शोमा आनंद पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समंदर सिर्फ पानी का विशाल संग्रह नहीं बल्कि भावनाओं का आईना है, उसकी खामोशी में भी एक शोर महफिल है, इसकी हर लहर में एक रहस्य छुपा हुआ है, तो गहराइयों में दबी है एक असीम दुनिया, सदियों से बहता फिर भी ताज़ा लगता है, उसकी गहराइयों में कितने रहस्य दफन हैं, उसके हर मोती में कितने ख्वाब छुपे हैं, समंदर के शरण में जिंदगी मुस्कुराती है, उसकी विस्तृतता में एक आज़ादी का एहसास है, देखने में अथाह और शक्तिशाली समंदर फिर भी कितना बेबस है, यह बेबसी इंसानी फितरत और भावनाओं से भी मेल खाती है, जहाँ हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ खास चीज़ों के लिए लाचार होते हैं। अब आपको हम आगे जो गीत सुनवाने वाले हैं, ये झुक गया आसमान इस फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

झुक गया आसमान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, राजेंद्र कुमार और सायरा बानू पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि आज की इबारत में विशाल अनंत कभी शांत चित्त तो कभी विकराल रौद्र रूप सिंधु की महिमा बखान है, कभी अटखेलियां करती लहरों और ज्वार भाटा से पर्यटकों को आनंदित करती है तो कभी पर्यावरण असंतुलन से असंतुष्टि का प्रदर्शन अपने रौद्र रूप चक्रवातों और सुनामी से करती है। समंदर मानव कल्याण के लिए खनिज जीव जंतु संचार परिवहन देश सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ भी है। अनेकों रहस्यों को समेटे सिंधु आज भी दहाड़ते हुए आकर्षण की प्रधानता स्वयं प्रमाणित करती है। सागर की लहरों संग का मनोरंजक सफर का हमें इंतजार है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज बातें होंगे समुद्र की, जिसे हम सागर जलधि पयोधि रत्नाकर अर्णव आदि नामों से भी जानते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से ढका है, जिसमें महासागरों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। ये सूर्य की हानिकारक और तीव्र गर्मी को सोखकर वैश्विक तापमान को संतुलित रखता है। अगर समुद्र न हो तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले सबसे बड़े सिंक के रूप में काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, सागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। गाना है सागर जैसी आंखों वाली। अभिनेत्री कौन है, उनका आज जन्मदिन भी है तो उन्हें हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ से जावेद अख्तर के बोल संगीत आरडी बर्मन का।

ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना है, सागर जैसी आंखों वाली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया। आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र केवल खारे पानी का अथाह विस्तार नहीं, बल्कि पृथ्वी का धड़कता हुआ हृदय है। दूर तक फैला उसका नीला कैनवास जितना मनोहारी है, उतनी ही गहरी उसकी संवेदनाएँ हैं। उसकी लहरें तट से मिलने की उत्कंठा में दौड़ती है, टूट जाती है, फिर भी जाते जाते सीप, शंख और मोतियों जैसी अनमोल सौगातें दे जाती है। मानव की उपेक्षा, प्रदूषण और प्रकृति की चुनौतियों को सहते हुए भी वो एक मौन तपस्वी की तरह बिना किसी शिकायत के सब कुछ न्यौछावर कर देता है और सृष्टि के लिए जीवन संतुलन तथा समृद्धि का आधार बना रहता है। अनंत गहराइयों, असीम धैर्य और मानवीय भावनाओं के इस जीवंत दर्पण में अनगिनत कहानियां, रहस्य और जीवन के सूत्र समाये हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनोखी रात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत, संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। संजीव कुमार इस गाने में एक वाहन चलाते हुए दिखाई देते हैं, वो वाहन कौन सा है आप हमें बताइए।

अनोखी रात फिल्म का ये गाना संजीव कुमार पर फिल्माया गया है और इस फिल्मांकन में वो बैलगाड़ी चलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र हमें सिखाता है कि गहराई में ही असली खजाना छिपा होता है। ऊपर लहरों का शोर होता है लेकिन भीतर अनगिनत मोती पलते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि इसका यानी कि समुद्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी पृथ्वी को करीब 70% घेर के रखता है और हमें हवा पानी मुहैया करवाता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। इसके किनारे खड़े होने पर अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य देखने का रोमांच अलग ही होता है। ठंडी हवा के झोंके से मन आनंदित होता है तो कभी दूर तक शांत दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि समुद्र केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि एक भावना है। इसे देखकर मन में असीम शांति और कभी कभी विचारों का ज्वार भाटा उठता है। यह बाहर जितनी अटखेलियां करता है इंसान के भीतर भी उतनी ही गहरी हलचल पैदा करता है। समुद्र की लहरें जब तट की रेतीली किनारे से टकराती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। लहरें अपने साथ गहरे समंदर में सुंदर सीप शंख और मोती तट पर छोड़ जाती है जिन्हें लोग यादों के तौर पर समेट लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगोली फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल और संगीत है शंकर जी जयकिशन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है आप बताइए हमें।

अभिनेत्री वैजयंती माला ये गीत गा रही हैं फिल्म में जो हमें दिखाई देता है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सागर की लहरें किनारे से टकराकर लौट तो जाती है लेकिन हार कर नहीं, वे फिर जाती है, फिर कोशिश करती है। शायद इसी में जीवन का सबसे सुंदर संदेश छिपा है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व महासागर दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और उज्जवल भविष्य की नींव है। बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है कि ऐसी चीज़ों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय हैं हमारे ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाएं तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहाँ पर फेंक करके ना जाएं, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहाँ आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहाँ आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीज़ों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या देख पाएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को बहला नहीं पाएंगे। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद का।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। एक हमारे साथी की बात है कि समुद्र, सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जलराशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य, स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो, सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है, जो एक संदेश देती है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो, जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें, मन को विचलित न होने दें। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की

राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डालकर बैठे हैं तो वहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। हम सुनना चाहते थे उनकी बातें, कुछ सुनी हर जाती लहर, मानो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ दूर, बहुत दूर ले जा रही हो, और हर आती लहर हमें अनगिनत खुशियां दे रही हो। बस फिर क्या, हमारी नटखट सी परी ने कहा, नानी उठो, हम दोनों इसमें पत्थर फेंकेंगे, और हमारी बातें अधूरी रह गई। हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे समुद्र से। एक साथी लिख रहे हैं कि सागर की आती जाती लहरें हमें ये संदेश देती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों की लहर आती, कभी चुनौतियों की। लेकिन जैसे लहरें बार बार किनारे पर पहुँचने का प्रयास करती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार कर लौटना नहीं, बल्कि फिर से उठकर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे सुंदर सीख है। चलिए अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, तकदीर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ और साथ में कुछ और भी आवाज़ें हैं, सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और इला देसाई की इसमें आवाज़ें हैं, और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है ये, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति सात समंदर पार जाते हैं तो हम क्या उम्मीद रखते हैं, यही ना कि चाहे जो भी हो, बस आप सुरक्षित घर लौट आइए, घर लौट आइए।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सागर किनारे जो शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों से किरणें आर पार गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का 16 श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मनमोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयां हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपने सुंदरता, शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मजेदार फिल्म का गाना एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

एक साथी लिखते हैं कि कुछ बातें गीतों की तरह होती है, जितना सुनो उतनी ही अच्छी लगती है, और कुछ रिश्ते लहरों की तरह जो दूर रहकर भी मन के किनारों को छूते रहते हैं। कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो मन के किनारों को छूते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना संकल्प फिल्म का गाना, कैफी आजमी के बोल, संगीत खय्याम का, आवाज़ किसकी है बताइए हमें।

जी हाँ, इन सागरों की गहराई को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
3: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
4: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
1: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
3: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के

0: 90% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
2: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
0: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
5: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
4: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
4: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो भारती राष्ट्रीय सेवा, देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ये बंदे ने फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में है, बी डी मिश्रा ने लिखा है, एस एन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं
1: और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़कर आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी, वो अक्सर आप जहाँ पैर रखेंगे दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहां खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा, तो ये सावधानी हमें
1: बिल्कुल
2: बताई थी।
1: ये कहा जाता है ना कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं, तो यहाँ का मालूम है यहाँ के निवासियों को, और इतना गहरा भी नहीं गहरा समंदर यहाँ का। लेकिन बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज़्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है, वहाँ जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाएं और कहीं पर रेत धसकती है। और कुछ ऐसे जगह खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली, जहां पर हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहां पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है इतना तक। और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहाँ जहाँ जा रहे हैं पहले वहाँ के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहाँ पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगे?
2: क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीज़ें ले जाते हैं या वहाँ से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज़ जैसी चीज़ होती है या आपने दोने में कोई चीज़ खाई है तो वो सब वहीं पर छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाते हैं जो उसको दूषित कर देता है पानी
1: और आपको वापस देता भी है,
2: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है।
1: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा। मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
2: संदेश देता है।
1: तो ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं आ गई।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे जैसा वो उसके साथ करेंगे वो भी वापस जवाब देता है, तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए खाइए पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में पैकेट में झोले में रख के ले आइए अपने घर में आसपास जो आपका कचरा दान उसमें डालिए, या वहाँ पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए, वहाँ समुद्र के वातावरण को उसके किनारे को उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करिए इसका ध्यान।
1: और बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुंबई में भी खासतौर से एक बीच है अक्सा बीच जो कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है तो वहाँ पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है। और उस वहाँ पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है
2: जी,
1: और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है ज़िंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें, बजाय ये लिखने की हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे। अब क्या करें हम?
2: अब गीत

0: तो ममता जी हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेद भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजे। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस पर
1: वो हमने बताई
0: दिया है। और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोले क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण इसका भाग दो।
1: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अंस

0: अपनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
2: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधु को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
2: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए

तिला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते, फिर हाँप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी। पहला पहला

0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
1: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या, लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन निद्रा राग रंग आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
0: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
1: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
2: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
1: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
2: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
1: फजूल की मचमच,
2: तुमसे मतलब?
1: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
2: तो मेरा घर कहीं और है।
1: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
2: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
1: ओहो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
2: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्टे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
1: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
2: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
1: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
2: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा

0: कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
1: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरा ये मतलब नहीं था, कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
0: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
2: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहु विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है, जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहाँ तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहाँ है?
2: मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहाँ जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने

0: पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
1: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय पीड़ा, असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल वेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहाँ पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है हम सब
1: बिल्कुल ईंधन का साधन है। और व्यापार, पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में, प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान हैं। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती हैं, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ही आकर्षित करती है। दूध सी आते शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांध दी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी सखियां बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर है। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरते देखे तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा हैं ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से

0: ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहाँ स्वच्छता, साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
0: शुक्रिया मंजरी जी, लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
1: जी,
0: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय, हम प्रकृति के उन नज़ारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई

0: ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
0: शुक्रिया मंजरी जी, लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
1: जी,
0: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय, हम प्रकृति के उन नज़ारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
0: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारी ऑक्सीजन को हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
1: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए, सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है, बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो।
0: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देवबर्मन ने संगीत दिया। फिल्म

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना कुछ कहने वाले,
0: आपने मुझे बोले ही नहीं थे, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से,
1: तपाक से
0: मतलब ये तपाक से बोलना हुआ,
1: तपाक से बोलना हुआ
0: लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, और तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसे बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं, कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया,
1: लेकिन
0: आप घबरा गई,
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी, हाँ। कि मतलब वो
0: अच्छी बात जान बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं, ये ऐसा था।
1: बिल्कुल, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है मतलब है, कहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं। कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है, और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है, और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी, और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं, जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ। भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से,
1: बिल्कुल,
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो, तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को बर्बाद करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वा

0: हट हो जाए, पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार इसने बढ़ता है, इन्होंने बात लेकर के।
1: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी, विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
0: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहाँ लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं, वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन, रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी, अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में ना काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
0: बिल्कुल।
1: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
0: देखिए एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे। ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है, लेकिन प्रायः महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है पड़ोसी
1: काफी विश्लेषण किया है इन्होंने।
0: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ, कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है। अब नहीं तो कहकर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
1: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं, फटाफट तपाक से ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
0: सही बात।
1: तो ये क्या वजह है, हमें लगता है कि
0: बड़े बैठे होते होंगे इसलिए बोल जाते होंगे।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती हैं?
0: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं।

0: कहना है,
1: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम कल
2: ही कहना पड़ेगा
1: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से जी। तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज?
2: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
1: तो
2: खाते
1: ये
2: हैं।
1: रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
2: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
1: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
2: अभी तो
1: सिर्फ बनाया नहीं जाता है।
2: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे आपकी आंखों की जो चमक थी वो समझ गई।
1: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही हैं?
2: आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं। इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो लोई आटा साना उससे लोइया बनाइए, उसमें आलू का भ्रावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी।
1: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
2: बिल्कुल ये टाली भी नहीं जाएगी।
1: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1/6 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1/6 चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकाल कर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
2: जी।
1: और अब ये गाना सुनिए।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज़ थी। और अब घड़ी की ओर ज़रा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये

0: मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
0: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ, और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
1: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
0: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है, और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और या बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफ़ी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही, लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज़ होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज़ शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज़ पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है, तो उनको डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
1: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वह किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
0: डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
1: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नज़रिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
0: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वज़न कम होना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफ़ी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और जब हम शुगर चेक करते हैं तो

0: पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है, इतना ज्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो, कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वज़न कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज़्यादा खा लिया है तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा, बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत ज़रूरी है।
1: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप
0: श्रोताओं को। मैं ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज़ ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज़ के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ हो सकता है, या बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज़ हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज़ के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज़ का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज़्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का इंडिकेटर है, और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है।
0: अच्छा, सपोज़ पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज़ नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c

0: A1C ज्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का संकेत है। इसके अलावा दो तीन और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं। अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज का इंडिकेटर मिलता है। और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है, जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज़ का मरीज़ ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है। तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
0: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है। अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है। बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का बीपी बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
1: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है, क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है। ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ रहा है। कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
0: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं, उनमें जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं। उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
1: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है,
0: राइट, पेशेंट्स वो को दूर हो जाता टेंशन होती है।
1: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
0: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो मेरे MD के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, इसकी कोई उम्र नहीं है। 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज़ है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
0: हाँ।
1: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज़ की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज़ की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वज़न बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज़ इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और

0: न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
1: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज़ आ जाता है?
0: ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज़ हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है तो काफ़ी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज़ आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज़ होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
1: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज़ के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता?
0: टाइप 1 डायबिटीज़ में हम गोलियां नहीं दे सकते, अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज़ है कि नहीं। बट अगर बच्चा है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसमें इंसुलिन इज़ द लास्ट ऑप्शन, बहुत बेहतरीन दवाइयाँ मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा?
0: जी सही बात है, इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं।
1: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दुर्बलता आती है?
0: डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: अच्छा, ऐसे कोई मरीज़ आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज़ हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
0: डायबिटीज़ जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दे, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशन है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज़ की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज़ हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
1: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
0: ये जो गाना है ये दिल के बहुत

0: करीब है और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे ज़मीं पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे ज़मीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज़ हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन हैं। ज़रूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज़ होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज़ नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज़ होने की। आजकल जो उससे ज़्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम।

0: ओबेसिटी। डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज़ है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज़ हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की,

0: जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज़ हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन तीन भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, दो को नहीं हुआ?
0: डायबिटीज़ में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज़ है तो सभी बच्चों को डायबिटीज़ होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज़ नहीं हो।
1: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
0: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ, ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है, ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी स्टडीज है जो बताती है कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो, बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो
1: जी।
0: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी, काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
1: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए
0: जी। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफ़ी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
1: जी।
0: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज़ होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज़ जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊँ तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आँखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आँख का पर्दा है, जहाँ पे इमेज बनती है, उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं, इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में। स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा

0: रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में ज़ख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये ज़ख्म बढ़ता जाता है और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं। इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुट वेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पिटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते हैं तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है, लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज नहीं है उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज नहीं पहने और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगा।

0: में जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़ के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें बहुत ही कम होती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम ख़त्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज़ है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के, उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोंड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाद्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए और तली हुई चीज़ें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज़्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो यस, आप डायबिटीज़ की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ होने की संभावना है।
0: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
1: यस।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज़ शुगर फ्री?
1: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की

0: तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं लें, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज़ कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
1: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
0: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूँगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
1: आइए सुनते हैं।

0: साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुनें तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने

फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं महिला जगत कार्यक्रम।

आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य प्राप्त होता है या अनुभव। नमस्कार सखियों, महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सखियों, अपने इस कार्यक्रम में हम लाते हैं ढेर सारी बातें, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और मन भावन गीत संगीत। सखियों, आज के कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी सखी आरती। सखियों, जल हमारे जीवन का आधार है। विज्ञान के अनुसार जीवन की शुरुआत जल से ही हुई है, इसीलिए जल को जीवन भी कहते हैं। इससे ही जल की महत्ता का

पता चलता है। पानी केवल हमारे लिए ही नहीं, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, खेती बाड़ी, उद्योग धंधों के लिए भी जरूरी है। सखियों, आज हमारी चर्चा का विषय है जल की हर बूंद कीमती है। सखियों, हमारी धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका होने के बावजूद हमारे लिए पेयजल मात्र 1% है। बढ़ती जनसंख्या के लिए यह पेयजल बहुत कम है, अतः जल संरक्षण करना और पानी का अपव्यय रोकना वर्तमान की परम आवश्यकता है। हम मानव अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन कर रहे हैं। सखियों, प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, पर हमारे स्वार्थ और लालच को नहीं। जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी प्रतिदिन 1 अंडा देकर हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, लेकिन उसका पेट चीर देने से कुछ हासिल नहीं हो सकता, वैसे ही प्रकृति क्षणे क्षणे हमें सब कुछ देती है, किंतु सब कुछ एक बार में पाने की चाह रखने के फेर में हम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट चीर कर प्रकृति की संपदा को लूटना चाहते हैं। सखियों, जल ही जीवन है, यह बात हम सब जानते हैं और मानते भी हैं, फिर भी इसकी कीमत नहीं समझते और व्यर्थ ही जल बहाते हैं। हवा, पानी, जंगल हमें प्रकृति से वरदान स्वरूप मिले हैं, जिनके बिना हमारे अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि जल की बूंद बूंद अमृत समान है। अमृत तो कल्पना हो सकता है, पर जल तो अमृत से भी मूल्यवान है, जो हर पल हमें अपने होने से यह अनुभव कराता है। जल है तो कल है, जल है तो हम हैं, अन्यथा हम भी नहीं। राजस्थान जैसे राज्य में तो पानी की बूंद बूंद की कीमत महिलाएं जानती हैं। पानी लाने के लिए बर्तनों को सिर पर रख कर मीलों चलती महिलाएं बादलों की ओर टकटकी लगाए सूनी आंखों वाले किसान ही इस पानी का मूल्य जानते हैं। पानी है तो जीवन में रस है, बिना पानी के जीवन सूना है। रहीम जी का दोहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी के महत्व को रेखांकित करता है। सखियों, पानी खुशहाली सुख समृद्धि का प्रतीक है। जहाँ पानी की कमी है, वहाँ खुशहाली एक सपना ही है। जल स्रोत, नदी, तालाब, झरने हमारी लापरवाही से या तो सूख गए हैं या इतने प्रदूषित हैं कि हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। कुएं और अन्य भूगर्भीय जल स्रोत हमारी अनदेखी के कारण सूख गए हैं। आज सारी छोटी बड़ी नदियां प्रदूषण की शिकार होकर धीरे धीरे मर रही हैं। ऐसा हमारे भारत देश में हो रहा है, जहां जल को देवता माना जाता है, नदियां देवी स्वरूपा मानी जाती हैं। नदियों के किनारे बसे सारे शहरों का मल मूत्र, गंदगी, कल कारखानों का अपशिष्ट सब कुछ नदियों में विसर्जित किया जा रहा है, जिस गंगा, यमुना और अन्य नदियों को पूजनीय मानकर हम उपासना करते हैं, उन्हें अपवित्र करने का महान पाप भी हम लोग ही कर रहे हैं। क्या कोई तीर्थ यात्रा, पवित्र स्नान हमें इस पाप से मुक्त कर सकेगा? नहीं, आज हम इस पाप का परिणाम भोग रहे हैं। आज पानी की कमी से सबका जीवन संकट में है। आज शुद्ध जल संकट में है और जल संकट के कारण हम सबका अस्तित्व भी संकट में है। सखियों, जल मानव को तृप्त करता रहा है। आज शुद्ध जल का संकट उपस्थित हो गया है, इसलिए वरदान रूप में प्राप्त पानी जो हमें प्रकृति से मुफ्त मिला था, आज बोतलों में बंद होकर बिकने लगा है। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हमारा भविष्य कितना भयावह होगा। सखियों, जल ही एक ऐसा तत्व है जो हर आकार और रंग में ढल जाता है। जल स्वाद की परिभाषा से रहित है,
पर जल जैसा

स्वादिष्ट कुछ नहीं। हर स्वाद के बाद तृप्ति का आनंद तो जल ही देता है। सारी सृष्टि में जल से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। पर्यावरण असंतुलन के कारण बारिश में कमी आ रही है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, बाढ़ आ रही है। सतही जल के समाप्त होने या दूषित होने के कारण भूगर्भीय जल का अति दोहन किया जा रहा है। भूगर्भीय जल स्रोत भी सूख रहे हैं और ज़्यादा गहराई से जल निकाला जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पनप रही हैं। हमारे देश के अनेक स्थानों पर जल संकट भयावह रूप लेता जा रहा है। इसका प्रभाव भी बहुत घातक है। पेयजल की कमी के कारण दूषित जल पीने या काम लेने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। सखियों, समस्या विकराल है, पर हम सब मिलकर इस समस्या के लिए समाधान ढूंढ सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी जल का मूल्य बता सकते हैं। सखियों, जल की बूंद बूंद कीमती है और कहा भी जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पारंपरिक जल स्रोतों, सतही जल स्रोतों की साफ सफाई और संरक्षण आवश्यक है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण के पारंपरिक ढांचे जैसे खड़ीन, टांका, बावड़ी, कुइयां बनी हुई हैं। हमारे पूर्वज पानी की कीमत जानते थे, इसलिए वे पानी की बचत करते थे। हमें घर में ही नल से जल प्राप्त हो जाता है तो हम जल का मूल्य नहीं जानते। हमें अपने पूर्वजों की भांति जल संरक्षण करना होगा, बूंद बूंद को सहेजना होगा। टपकते हुए नलों की मरम्मत तुरंत करानी चाहिए। आरओ से निकले पानी को साफ सफाई में, दाल चावल सब्जियों के धोने के पानी को पेड़ पौधों की सिंचाई में काम में ले सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ढांचे बनवाने चाहिए। छतों से बह जाने वाले वर्षा जल को नालियों में बहने से रोकने के लिए भूमिगत टैंक बनाए जाने चाहिए। नहाते ब्रश करते समय जल का सीमित और समुचित प्रयोग करना चाहिए। आसपास स्थित जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करना चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। जलाशयों को गहरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सखियों, सरकार ऐसे अनेक प्रयास कर रही है जिनमें जन सहयोग चाहिए। हम सब अपना योगदान देकर इस बहुमूल्य जल को सहेज सकते हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के जल शक्ति अभियान का मूल मंत्र है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य भूजल को रिचार्ज करने, बाढ़ को कम करने, राजस्थान सहित सभी राज्यों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास है और वर्षा जल के संचयन का प्रयास है। सखियों, पानी हमारा जीवन है और जीवित रहने के लिए हमें इसे संभाल कर काम में लेना होगा, इसका संरक्षण करना ही होगा। राजस्थान में फार्म पॉन्ड योजना वर्षा जल संचयन के लिए ही चलाई जा रही है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने में अधिक समय नहीं है, अतः सबको बूंद बूंद सहेजने के लिए प्रयास करना है। सखियों, अपनी बातों को देते हैं कुछ विराम और सुनते हैं यह गीत।

सखियों, आपने सुना यह गीत, आशा है आपको पसंद आया होगा। सखियों, जल की महिमा अपरंपार है, जल जीवन का आधार है, जल नहीं तो कुछ नहीं। धरती नीला ग्रह कहलाती है क्योंकि पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी से घिरा है और इस 71% का लगभग 97% पानी खारा है जो कि महासागरों में है। सखियों, आज 8 जून है, यानी आज है विश्व महासागर दिवस। आज जानकारी में हम बात कर रहे हैं विश्व महासागर दिवस के बारे में। सखियों, महासागर दिवस को पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया तथा वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। यह दिवस महासागरों के प्रति जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सखियों, महासागर केवल अथाह जलराशि के भंडार नहीं है बल्कि ये पर्यावरण के महान रक्षक हैं। महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग घेरते हैं। महासागरों में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन पृथ्वी के ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। विश्व के मौसम और जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि तापमान को संतुलित करना, तूफानों का निर्माण करना, वर्षा करना। भारत में भी मॉनसून समुद्र के तापमान पर निर्भर है। सखियों, हमारे शब्दकोशों में समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। रत्नों का आगार है ये महासागर। मत्स्य पालन, पर्यटन, प्राकृतिक तेल, गैस और खनिज संसाधन महासागरों से मिलते हैं। सखियों, 80% से अधिक वैश्विक व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। महासागरों में असंख्य जीव जंतु और पौधे रहते हैं जो जैव विविधता का बहुत बड़ा आधार है। मानव जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्रों से ही रोजगार प्राप्त करता है। सखियों, समुद्र हमारे अस्तित्व के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी हवा, पानी, भोजन। महासागरों से जुड़ी अनेक कथाएं हमारे पौराणिक ग्रंथों

उपलब्ध हैं, जो महासागरों के महत्व को बताती हैं। परंतु महासागरों को आज अनेक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में प्रदूषण, जिसने प्लास्टिक कचरा, रसायन, तेल रिसाव आदि महासागरों के लिए संकट बन रहा है। प्रदूषण के कारण महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि, अम्लीकरण और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। मत्स्य उद्योग में मछलियों को अधिकाधिक निकाला जा रहा है, जिससे समुद्री जीवन में कमी आ रही है। शिकार के कारण कई जलीय जीव प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं, जिससे परितंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसे इस तरह भी समझना चाहिए कि छोटी मछलियां बड़ी मछलियों का आहार होती हैं, पर समुद्री जीवों के बढ़ते शिकार से जीवों का खाद्य चक्र टूट गया है। तटीय विकास, क्रूज, पर्यटन, जल विद्युत परियोजनाएं और समुद्र में गिरने वाले अपशिष्ट पदार्थों से भी समुद्री जीवन के लिए संकट उपस्थित हो गया है। बढ़ते कचरे, विशेष रूप से प्लास्टिक कचरे के कारण समुद्र में जीवन के लिए खतरा बन रहा है। सखियों, विश्व महासागर दिवस 2026 का आधिकारिक विषय पुनर्कल्पना, हमारी ज्ञात दुनिया से परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध है। यह थीम महासागरों की सुरक्षा और उसके साथ एक स्थायी संतुलन बनाने पर केंद्रित है। इस कार्य का मूल विषय सार्वभौमिक है, चाहे देश तटीय हो या चारों ओर से समुद्र से घिरा हो। जलवायु स्थिरता, जैव विविधता और मानव कल्याण के लिए हर देश स्वस्थ महासागर पर निर्भर है। खुले समुद्र सहित महासागरों का संरक्षण हमारे नीले ग्रह यानी धरती के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी है। सखियों, पुनर्कल्पना विश्व महासागर दिवस की इस थीम के अलावा वैश्विक स्तर पर समुद्री संरक्षण के लिए कुछ अन्य सहायक कार्य विषयों पर भी जोर दिया गया है, जिनमें प्रमुख हमारी धरती के लिए सशक्त समुद्री क्षेत्र तथा एक महासागर, एक जलवायु, एक भविष्य साथ मिलकर बनाने हैं। इन विषयों का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक मछली पकड़ने और प्रदूषण को रोकना, स्थायी मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना है। सखियों, इस विषय में 2030 तक कम से कम 30% भूमि, जल और महासागर की रक्षा करने की गति को एकीकृत करता है। सखियों, महासागरों का आर्थिक, जैविक, प्राकृतिक महत्व और प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। फिर भी हम इसके प्रति सजग नहीं हुए तो हमारे अस्तित्व के लिए संकट उपस्थित हो सकता है। सखियों, विश्व महासागर दिवस हमें स्मरण कराता है कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह दिवस विश्व भर के लोगों को महासागरों के संरक्षण में शामिल होने, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु, जैव विविधता और मानव कल्याण के लिए स्वस्थ महासागरों के महत्व को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दिन लोगों, सरकारों, संगठनों को भावी पीढ़ियों के लिए महासागरों की रक्षा करने के लिए एकजुट करता है। सखियों, आगे बढ़ने से पहले चलते हैं गीतों के संसार में। आइए सुनते हैं यह गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, आपने सुना यह गीत, आशा है आपको पसंद आया होगा। सखियों, आज आकाशवाणी

अपनी 90वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज विविधा में हम जानेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के शानदार सफर के बारे में। सखियों, आज ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं, इसको पहले भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कहा जाता था। 8 जून 1936 को, यानी आज के ही दिन, इसे बदलकर अखिल भारतीय रेडियो यानी AIR कर दिया गया था। इसे ही आगे चलकर 1956 में आधिकारिक रूप से आकाशवाणी कहा गया। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण को दर्शाता है, जब एक ऐसी आवाज का जन्म हुआ जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। आकाशवाणी के साधारण से दिल्ली स्टेशन केंद्र से आवाजों को पंख मिले और उन शांत दीवारों से ऐसी गूंज निकली जिसने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से लेकर आज तक कालातीत, भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। सखियों, स्वतंत्रता के बाद AIR का तेजी से विस्तार हुआ। आज आकाशवाणी भारत की 98% आबादी तक पहुंचता है। आकाशवाणी का बाह्य सेवा प्रभाग 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है, वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज पहुंचाता है और प्रवासी भारतीयों से जुड़ता है। भारतीय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए AIR का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए इस विशाल देश के प्रत्येक निवासी को विभिन्न भूभागों में 2400 घंटे, 7 दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार और विचार उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। सखियों, यह नेटवर्क आज लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र में अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है। सखियों, आशा है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। इसी के साथ अपनी सखी आरती गुप्ता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप महिला जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवानी कार्यक्रम।

हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। कभी कोई विचार हमारी सोच बदल देता है, कभी कोई अवसर हमारे भविष्य की दिशा तय कर देता है, और कभी कोई ऐसी जानकारी मिल जाती है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है। युवा उम्र सपनों, संभावनाओं और नए अनुभवों की उम्र होती है। ऐसे में सही जानकारी, सही सोच और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इन्हीं कुछ दिलचस्प और उपयोगी बातों

के साथ हम हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम में। अगले कुछ मिनटों तक हम साथ मिलकर बात करेंगे उन विषयों की जो कहीं ना कहीं हमसे, हमारे जीवन से और हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। मैं हूं आरजे ओम प्रकाश नरुका और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युवा कार्यक्रम। तो आइए शुरुआत करते हैं।

कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, लेकिन मैं कहता हूँ नॉलेज इज पोटेंशियल। असली पावर तो जब बनती है जब उस नॉलेज पर एक्शन लिया जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को तैरना सिखाने की 100 किताबें पढ़ा दी जाए, YouTube के 1000 वीडियोस दिखा दिए जाए, लेकिन वो कभी पानी में उतरे ही ना, तो क्या वो तैरना सीख पाएगा? शायद नहीं। यही फर्क है नॉलेज और एक्शन में। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक शहर में दो दोस्त रहते थे, आरिफ और विवेक। दोनों का सपना था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालकर अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे। आरिफ के पास हर नई बुक होती, हर टॉपर की स्ट्रेटेजी उसे पता होती, कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है, कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसे सब मालूम था। दूसरी तरफ विवेक था, उसे सब कुछ तो नहीं पता था, लेकिन जो पता था उस पर वो रोज काम करता था। उसने एक छोटा सा टाइम टेबल बनाया और उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। एक साल बाद रिजल्ट आया। आरिफ अभी भी लोगों को स्ट्रेटेजी समझा रहा था और विवेक का सिलेक्शन हो चुका था। जब लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हुआ, तो एक बुजुर्ग शिक्षक ने बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो रास्तों की जानकारी रखते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो रास्तों पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, आज हमारी जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। मोबाइल की एक क्लिक पर मोटिवेशन भी है, एजुकेशन भी है और इंस्पिरेशन भी। लेकिन प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं, इम्प्लीमेशन की है। हमें पता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, हमें पता है कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, हमें पता है कि हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अक्सर

हम जानते ज्यादा हैं और करते बहुत कम हैं। याद रखिए, सक्सेस का रिश्ता सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एक्शन से होता है। एक एवरेज आइडिया जिस पर काम किया जाए वो उस ब्रिलियंट आइडिया से कहीं बेहतर है जो सिर्फ दिमाग में ही पड़ा रहे। इसलिए आज अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, जो मैं जानता हूँ क्या मैं उस पर अमल भी करता हूँ? क्योंकि कोई भी ज्ञान, चाहे वो किताबों से मिला हो, अनुभव से मिला हो या किसी गुरु से मिला हो, उसके अमल के बिना अधूरा है। नॉलेज आपको रास्ता दिखाती है लेकिन एक्शन आपको मंजिल तक पहुंचाता है।

को सिर्फ सुना नहीं बल्कि इसे अपनी तैयारी की शुरुआत बना लिया। कई बार युवा कहते हैं कि अभी तो नोटिफिकेशन आया है, तैयारी बाद में शुरू करेंगे। यही बाद में कई सपनों को पीछे छोड़ देता है। आरएएस सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि जिम्मेदारी, नेतृत्व और समाज में बदलाव लाने का अवसर भी है। राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में काम करने का सपना हजारों युवाओं का होता है और हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में अपना भाग्य आजमाते हैं। इस परीक्षा के लिए स्नातक यानी ग्रेजुएट पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सामान्य आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है तथा नियमानुसार आयु में छूट का प्रावधान भी है। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नोटिफिकेशन पढ़ना पहला कदम है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब किताब खुलती है, समय सारणी बनती है और रोज का संघर्ष शुरू होता है। इसलिए अगर आपका लक्ष्य आरएएस है तो आज ही अपनी तैयारी की समीक्षा कीजिए, अपने मजबूत और कमजोर विषय पहचानिए और एक स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है आज आप एक साधारण अभ्यर्थी हो, लेकिन आने वाले वर्षों में आप ही किसी जिले के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हों।

क्या आप भी राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, खासकर प्रशासनिक सेवा में जाने का? तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने RAS भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 607 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलेगा। चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि अवसर नहीं मिलते, लेकिन सच ये है कि अवसर आते हैं, बस हमें तैयार रहना पड़ता है। जरा सोचिए, आज से कुछ महीने बाद जब RAS परीक्षा का परिणाम आएगा, तब सफल अभ्यर्थियों में वही लोग होंगे जिन्होंने इस खबर

अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं और पढ़ाई के साथ साथ ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं जहां सीखने के साथ कमाई भी हो, तो आज की जानकारी आपके लिए है। डिजिटल इंडिया के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD ने टेक्निकल समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 की घोषणा की है। इस इंटर्नशिप के तहत देश भर से 50 प्रतिभाशाली युवाओं का चयन किया जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 20,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। दोस्तों, अक्सर कॉलेज में पढ़ते समय एक सवाल मन में आता है कि आखिर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कैसे मिले। किताबों में थ्योरी तो मिल जाती है, लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अनुभव बहुत कम छात्रों को मिल पाता है। यही वजह है कि आजकल अच्छी इंटर्नशिप किसी भी छात्र के करियर प्रोफाइल को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। NEGD की ये 6 महीने की इंटर्नशिप युवाओं को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा इंजीनियरिंग, UI/UX डिजाइन, बिजनेस एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी और टेस्टिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में काम करने का अवसर देगी। कल्पना कीजिए, जिस टेक्नोलॉजी को आज हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी पर हम अनुभवी प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। ये अनुभव सिर्फ रिज्यूमे की एक लाइन नहीं होता, बल्कि भविष्य की नौकरी और करियर ग्रोथ का मजबूत आधार बनता है। इस इंटर्नशिप के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं वर्ष 2025 और 2026 में डिग्री पूरी करने वाले उम्मीदवार तथा 2027 में डिग्री पूरी करने वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी आवेदन के पात्र हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित कर दी गई है। चयन शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग और उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, मौके हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं आते, कई बार वे एक साधारण सी सूचना के रूप में हमारे सामने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उसे पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग उसी अवसर को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजिटल इंडिया के मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये इंटर्नशिप आपके लिए एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे युवा सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि कौशल और अनुभव भी हासिल करेंगे, मैं आप लोगों को एक गीत सुना देता हूँ।

आपने कभी सोचा है कि अगर धरती से महासागर गायब हो जाएं तो क्या होगा? शायद बारिश नहीं होगी, मौसम का संतुलन बिगड़ जाएगा और जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज हम देख रहे हैं। यही वजह है कि हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को महासागर के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। दोस्तों, हम में से कई लोग समुद्र के किनारे नहीं रहते, लेकिन हमारी जिंदगी किसी ना किसी तरह महासागरों से जुड़ी हुई है। धरती की लगभग 70% सतह महासागरों से ढकी हुई है। यही महासागर हमें ऑक्सीजन देते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं और लाखों जीवों का घर बनने का काम करते हैं। एक दिलचस्प बात जानिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम चांद की सतह के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं कम हम महासागरों की गहराइयों के बारे में जानते हैं। यानी महासागर आज भी रहस्यों की एक विशाल दुनिया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव और बढ़ता कचरा महासागरों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंच जाता है, जिससे मछलियों, कछुओं और अन्य समुद्री जीवों का जीवन प्रभावित होता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बच्चा समुद्र तट पर टहल रहा था। किनारे पर हजारों छोटी मछलियां लहरों के साथ आकर फंस गई थी। वो बच्चा एक एक मछली उठाकर वापस समुद्र में डाल रहा था। एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी सारी मछलियां हैं, तुम्हारे ऐसा करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बच्चे ने एक मछली को समुद्र में फेंकते हुए जवाब दिया, इस एक मछली को तो फर्क पड़ेगा ना। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर हम प्लास्टिक का कम उपयोग करें

कचरा इधर उधर ना फैलाएं और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बने तो महासागरों की रक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। याद रखिए, महासागर सिर्फ पानी का विशाल भंडार नहीं, वे धरती की धड़कन है, जीवन का आधार है और आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। विश्व महासागर दिवस पर आइए संकल्प लें कि हम प्रकृति के इस अनमोल उपहार की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की बातचीतों ने आपको कुछ नया सोचने, कुछ नया सीखने और शायद कुछ नया करने के लिए प्रेरणा दी हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही जानकारी, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास, तीनों का साथ बहुत जरूरी है। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है, इसलिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते रहिए। इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आरजे ओम प्रकाश नरुका और आप सुन रहे थे आकाशवाणी का युवाणी कार्यक्रम। नमस्कार।

अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को सत्याल भाई की तरफ से बहुत बहुत घनी घनी राम राम। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे ज्वार की उन्नत उत्पादन विधि। आपका करवाएंगे मनोरंजन और लोकगीत सुनवाएंगे, आपको एक भेंट वार्ता सुनवाएंगे, कृषि में मृदा सुधार एवं संतुलित उर्वरकों का उपयोग कैसे करें, और जानकारी देंगे कि कीकोड़ा की वैज्ञानिक खेती से अधिक आय पाएँ और खेत बचाओ अभियान, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे। तो आइए किसान भाइयों, सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं ज्वार की उन्नत उत्पादन विधि। ज्वार अर्धशुष्क क्षेत्रों में गरीब और जो छोटे किसान जो होते हैं, यानी सीमांत जो किसान जो होते हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण फसल है। यह कम और अनिश्चित जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जिसमें क्या है कम वर्षा होती है, वहाँ चारे की फसल के रूप में एक अच्छी फसल है, जो कि राजस्थान में उच्च तापमान के लिए इसकी उच्च सहनशीलता, गीले से सूखे तक के वातावरण के लिए महान अनुकूल क्षमता क्या है, जो फसल जो ये होती है वो रखती है। अब इसकी जो उन्नत जो किस्में हैं वो हम उनकी बात करें, तो उनमें क्या है, जैसे भाई मध्यम भारी मिट्टी में हम जिनको बो सकते हैं, तो उसमें हैं जैसे अनुशासित हाईब्रिड वाली जो उन्नत किस्में हैं, CSH-14 है, CSH-23 है, CSH-25 है और CSH-27 है, ये तो इसके लिए हैं मध्यम भारी मिट्टी के लिए। और अर्धशुष्क एवं संक्रमणकालीन जो क्षेत्र है उनके लिए अनुशासित जो उन्नत किस्में हैं, CHS-16 है, CHS-18 है और CSH-23 है, ये जो किस्में हैं। और दाने के लिए उन्नत किस्में हैं उनमें उनकी बात करें तो उनमें CSB-15 है, ये जो क्या है जो किस्म होती है, ये दाने एवं चारे दोनों के लिए उपयुक्त होती है और ये 95 से 100 दिन में पककर के तैयार हो जाती है। इसके पौधे की औसत जो ऊंचाई है वो 230 से 240 सेंटीमीटर होती है और यह किस्म यानी 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक जो यानी

0: दाना जो इसमें हमको देती है, और अगर उसके चारे की बात करें तो इसमें 105 से 110 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक जो सूखा चारा है वो हमारे किसान भाई ले सकते हैं। इसका दाना सफ़ेद होता है और उपयुक्त यानी अच्छा वातावरण अगर मिलता है तो इसकी जो दाने हैं जो 5 कुंटल एवं हरे चारे में 15 कुंटल तक अधिक यानी एक तरह से हम अतिरिक्त उत्पादन ले सकते हैं। अब हरे चारे के लिए जो उन्नत किस्में हैं उनकी बात करें तो उनमें CSH24, MFAI, CSB और जैसे CSB33, CSG69 है, CSP चरी और प्रताप चरी है, तो ये यानी जो उन्नत जो चारा होता है हरा चारा उसके लिए है। खेत एवं उसकी तैयारी हमारे किसान भाई कैसे करें तो इसकी बात करें तो इसमें शंकर एवं उन्नत ज्वार के लिए ऐसे खेत का चुनाव कीजिए जिसमें जल निकास की व्यवस्था हो। पानी के भराव वाले क्षेत्रों में ज्वार नहीं बोनी चाहिए। जहाँ यानी 40 से 50 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है वहाँ ज्वार असिंचित फसल के रूप में बोई जा सकती है। मानसून की वर्षा से पूर्व एक गहरी जुताई देसी हल से या जो डिस्क हैरो जो होता है उससे कर दें और खेत हमारे किसान भाई तैयार कर लें। बीज अंकुरण के लिए मिट्टी में जो क्या है पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जुताई के 20 दिन पहले प्रति हेक्टर यानी 25 से 20 गाड़ी अच्छी जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है उसको डाल दें और अच्छी तरह से खेत में मिला करके ऊपर से हमारे किसान भाई उसको पाटा वगैरह लगा दें। भूमि उपचार की बात करें तो सफ़ेद लट से ग्रस्त खेतों में क्या है फोरेट 10% या क्यूनल्फास 5% या कार्बोफ्यूरान 3% कण या एडीकार्ब 10% या सेविडोल 4% कण 25 किलो प्रति हेक्टर की दर से बुवाई शुरू कतारों में ऊर करके हमारे किसान भाई दे सकते हैं। फिर इनकी कतारों में बुवाई करें और जहां दीमक का प्रकोप हो वहां इसकी रोकथाम हेतु मिथाइल पैराथियन 2% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से हमारे किसान भाई को देना चाहिए। दीमक का प्रकोप कम करने के लिए खेत की पूरी सफाई अच्छी तरह से कर दें, जो जैसे कचरा वगैरह रह बच जाता है जो फसल में अवशेष बच जाते हैं तो उनको हटा दें। जैसे सूखे फसलों के अवशेष होते हैं इनसे क्या है दीमक ज़्यादा आती है और हमारे जो एक तरह से उसमें दीमक इकट्ठी लगती रहती है। बीज उपचार की बात करें तो इसमें संकर ज्वार के बीज उपचार करके ही वैसे तो वितरित किए जाते हैं, परंतु यदि वे उपचारित नहीं हैं तो बीज को 2 ग्राम एग्रोसेन GN या 4 ग्राम गंधक चूर्ण प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके ही हमारे किसान बोई जो हैं वो बोएं। देर से बुवाई करते समय तना मक्खी के होने वाले जैसे आक्रमण से फसल को बचाने हेतु 70 मिलीलीटर पानी या और इसमें 18 ग्राम गुड़ के बने हुए घोल में 60 से 70 ग्राम कार्बोफ्यूरान जो होता है वो 50% घुलनशील चूर्ण मिलाकर के प्रति किलो बीज की दर से उसको उपचारित करके हमारे किसान भाई वही करेंगे तो एक तरह से हमारा जो बीज है उसका उपचार हो जाएगा। उर्वरक की बात करें तो उर्वरकों का सही आवश्यकता जानने के लिए मिट्टी की सबसे पहले हमारे किसान भाई जांच कराएं और जांच के परिणाम के अनुसार ही उर्वरक जो होते हैं जो खाद वगैरह हम देते हैं रासायनिक वो दें। भारी वर्षा वाले जहाँ होती है तो उसमें ज्वार की सिंचित फसल में 80 किलो नत्रजन और 40 किलो फास्फेट प्रति हेक्टेयर दे में नत्रजन की आधी और फास्फेट की पूरी मात्रा बुवाई के पूर्व कतार में 10 सेंटीमीटर गहरी ऊर करके हमारे किसान भाई दें। शेष आधी नत्रजन बुवाई के 1 माह बाद वर्षा होने पर या सिंचाई के साथ में हमारे किसान भाई दे सकते हैं। वर्षा पोषित क्षेत्रों में या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में 40 किलोग्राम नत्रजन और 20 किलोग्राम फास्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारे किसान भाई बुवाई के समय दें। तो अब हमारे किसान भाई उनको सुनवाते हैं एक भेंटवार्ता। आइए किसान भाइयों, कृषि में मृदा सुधार एवं संतुलित उर्वरकों का उपयोग कैसे करें। वार्ताकार हैं श्री लवलेश कुमार जी, उप निदेशक कृषि रसायन राजकीय कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर। आइए किसान भाइयों सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज हमारे साथ हैं बबलेश कुमार जी। तो बबलेश जी हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: तो बबलेश जी, सबसे पहले आज हम आपसे बात करना चाहें मिट्टी के बारे में, मृदा के बारे में। तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहें कि जो स्वस्थ मृदा है उसकी क्या परिभाषा है, यानी कि किसे कहते हैं स्वस्थ मृदा, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं।
2: स्वस्थ मृदा वो मृदा कहलाती है जिसमें फसल उत्पादन के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, साथ में जो सूक्ष्म जीवों की संख्या वो पर्याप्त

0: मात्रा में उपलब्ध हो, जिससे कि उत्पादन अच्छा मिल सके, पौधे की आवश्यकता अनुसार सारे पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध करा सके। इस प्रकार की मृदाओं को स्वास्थ्य मृदा कहा जाता है।
1: बबले जी, अलवर जिले की ही हम बात करें तो मृदा की क्या स्थिति है और कौन कौन से जो पोषक तत्व हैं उनकी सामान्य तौर पर हमारे इस मृदा में कमी पाई जाती है, उनके बारे में भी थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को जागरूक करें।
0: जैसा कि 17 पोषक तत्व एक फसल के लिए जरूरत होते हैं जो मृदा से ही मिलते हैं, जिसमें से 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों तो वैसे मिल जाते प्रकृति से। बाकी जो न्यूट्रिएंट है बचे उसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जो सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, आयरन आदि, ये हमें देने पड़ते हैं या फिर मृदा में इनकी कमी होती है। तो हमें देखा जाए, हमारे अपने अलवर जिले की बात करें तो इसमें जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की भी कमी है। हमारे यहाँ किसान भाई ज़्यादातर प्याज की फसल लेते हैं तो धीरे धीरे एक पोटास पहले पर्याप्त मात्रा में था, धीरे धीरे वो भी कहीं कहीं उसकी भी कमी आने लग गई, क्योंकि अब जो पोटास कंजप्शन वाली हम फसल लेंगे तो उस पोटास की भी कमी आएगी। उसके साथ साथ सल्फर की डेफिशिएंसी भी आ रही है, सल्फर की भी कमी है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, जो सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, पर यदि वो पौधे को नहीं मिल पाएंगे तो उनसे विपरीत प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व और नाइट्रोजन, फास्फोरस इनकी है, पोटेशियम और सल्फर, इन पोषक तत्वों की अपने जिले में धीरे धीरे कमी आ रही है। और कमी आने का कारण मेन ये किसान भाई ओनली यूरिया डीएपी दो ही फर्टिलाइजर पर डिपेंड होते जा रहे हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर को यूज नहीं कर, सल्फर प्याज और जो अपने यहाँ सरसों की जो मेन फसल होती है इन दोनों के लिए बहुत आवश्यक पोषक तत्व होता है, तो इसका अपन नहीं देंगे, जमीन में नहीं देंगे, उपयोग नहीं करेंगे तो डेफिनेट एक कमी आनी आनी है। तो इस वजह से, और फिर दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो इन के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट और इन पोषक तत्वों को ज़्यादातर आजकल जो पोषक तत्व अपने एनपीके जो इंटीग्रेटेड आ रहे हैं जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि सारे पोषक तत्व जमीन को मिल सकें। एकल फर्टिलाइजर का उपयोग अब धीरे धीरे कम करना पड़ेगा।
1: यानी कि जो हमारे किसान भाई हैं वो लगातार जो यूरिया है या डीएपी है उनकी तरफ उनका झुकाव है और ज़्यादातर उन्हीं को वो काम मिल रहे हैं, जबकि आपके अनुसार हमारे जो किसान भाई हैं इन चीज़ों से कुछ हटके और जो पोषक तत्व हैं उनको भी हमारे खेती में जैसे सल्फर है, जिंक है, इनकी तरफ भी अगर ध्यान दें तो निश्चित अच्छी पैदावार ले सकें। अब बात करें कि जो हमारे कुछ समस्याग्रस्त मृदा हैं यानी कि जिन पर हम अच्छी पैदावार हमारे किसान भाई नहीं ले पाए, तो सामान्य तौर पर किसान भाई हैं उनका उपचार कैसे करें जिससे कि वो अच्छी पैदावार ले सकें।
0: समस्याग्रस्त जो मृदाओं की बात करते हैं अपने अलवर जिले के ज्योग्राफिकल उसमें देखें तो अपना एक कठुमर जो तहसील है, लक्ष्मणगढ़ साइड है और जो भरतपुर के एडजोनिंग गोविंदगढ़ साइड है, यहाँ पे सेलाइन सोयल है जहाँ पे सोडियम कंटेंट की मात्रा ज़्यादा है, बरसात में थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो गया तो वो पानी भर जाता है, मर्सी सोयल है। तो ऐसी मृदाओं को सुधारने के लिए एक जिप्सम आता है जिसमें कैल्शियम और सल्फर दो कंटेंट होते हैं, तो उसमें वो भूमि की जो पोरोसिटी उसको बढ़ाता है। तो ऐसी मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम काम में ले सकते हैं। हरी खाद के रूप में ढेंचा जो हमारे यहाँ सीरम बहुत तहत होता है उस एरिया में ही होता है पर्टिकुलरली, उसको ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए काम में लेके इन मृदाओं को सुधारा जा सकता है।
1: अच्छा जी, तो इस तरह से हमारे जो समस्याग्रस्त मृदा हैं उनको हमारे किसान भाई सुधार सकते हैं। अब हम आपसे बबले से जानकारी चाहें कि अलवर जिले है उसमें बोई जाने वाली जो बहुत सारी फसलें हैं उनमें हमारे कृषि विभाग द्वारा खाद एवं उर्वरकों की जो जानकारी उसके बारे में बताएं कि किस तरह से हमारे किसान भाई खाद और उर्वरकों का उनमें प्रयोग करें जिससे अच्छी पैदावार ले सकें और कम लागत में ले सकें।
0: पहली बार तो किसान भाई यहाँ जो देखने में पर्याय आया है कि मतलब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं कि जहाँ हमें नाइट्रोजन की एक बैग की जरूरत है वहाँ हम दो दो तीन तीन बैग तक काम में लेते हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब एक पर्टिकुलर एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देने से आप पौधे की ग्रोथ तो कर लोगे, देखने में हरी लगेगी, पौधा बढ़ जाएगा, पर उस पर उत्पादन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जिससे कि हमारी इनपुट कॉस्ट भी बढ़ती है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो इस खंड की जो भरतपुर खंड लगता है कृषि खंड जिसमें अपने यहाँ नौगांव में कृषि अनुसंधान केंद्र है वहाँ की पैकेज और प्रैक्टिस निकलती है, कुछ पैकेज प्रैक्टिस में रिकमेंडेशन होती है कि नाइट्रोजन इतनी और फास्फोरस इतनी, पोटेशियम इतनी, और उनका टाइमिंग भी रहता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कोई चीज़ को हम किस टाइम पे यूज करना है। यदि हम उस फर्टिलाइजर को जो मात्रा जरूरत है फसल को और टाइम पे यूज करते हैं और टाइम पे पानी देते हैं तो उत्पादन पे कोई मतलब विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो फालतू का हम जो अननेसेसरी का ज्यादा फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो उससे भी अपन बच सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का 35-40% हिस्सा ही पौधा ले पाता, बाकी तो आपका वोलेटिलाइजेशन में और या लीचिंग में लॉस हो जाता है। ऐसे ही बात करें हम 15-25% के आसपास जो फास्फोरस होता है जो डीएपी या एसएसपी देते हैं

0: उसका यूज कर पाती है फसल। मतलब बहुत कम पौधा एक बार जब उन फर्टिलाइजर देते बहुत कम ले पाता है। और मैक्सिमम किसान भाइयों को करना क्या चाहिए, आजकल जो मार्केट में फोलियर स्प्रे के जितने फर्टिलाइजर आ गए हैं वाटर सोल्यूबल, उनका खड़ी फसल पे यूज करना चाहिए। जैसे आजकल यूरिया की जगह नैनो आ गया, यदि अपनी फसल ने पूरा जमीन को कवर कर लिया है एक महीने की या 20-25 दिन से ऊपर की फसल हो गई, जैसे सरसों है, जैसे पहला पानी देते हैं उस समय यदि हम नैनो यूरिया को उस पर यूज करते तो उसका लीफ सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है फसल का। तो पौधा डायरेक्टली जितना अपने उस पर स्प्रे किया वो सारा उसके कॉन्टेक्ट में आया और सारे को पौधा कंजप्शन कर लेता है, इसलिए वो पूरा पूरा उपयोग हो जाता है। तो एफिशिएंसी परसेंट है जो बढ़ जाती है। ये नहीं कि अपन बीज के छोड़ दिया, कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि रात को पानी आएगा दिन में उसको यूरिया को छोड़ देते हैं, वो पिघल के आधा पिघल जाएगा या फिर उसका फर्टिलाइजेशन या वो लॉस होके आधा खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा मकसद है खाद हम देना चाह रहे हैं तो वो पूरा पौधा ले नहीं पाता। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे मान के चलो हमें 10 क्यारियों में पानी देना है तो उसमें उन्हीं में ही यदि ब्रॉडकास्ट करें तो उन्हीं में करें। और मैं आपको कहना चाहूँगा जहाँ तक आप हो तो ब्रॉडकास्ट से बचें और आप फोलियर स्प्रे को आप अपने प्रैक्टिस में लेके आएँ। जब तक आप फोलियर प्रैक्टिस नहीं लेके आओगे तब तक आपकी जो लागत कॉस्ट है वो कम नहीं हो पाएगी।
1: यानी कि आपके अनुसार हमारे जो किसान भाई हैं, और ये तो आप सही बता रहे हो कि जो किसान भाई हैं ना वो ज़्यादातर नाइट्रोजन यानी कि यूरिया खाद का छिड़काव बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि अब नैनो यूरिया है अगर आपके अनुसार उसका छिड़काव किया जाए तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको निश्चित रूप से यूरिया के बजाय कम लागत में और हमारी फसल की जो बढ़वार होगी वो अच्छी होगी और जो मृदा है उसकी भी गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी। अब बबले जी हम जानना चाहें कि हमारे इस समय अलवर जिले में जो खाद है और यह उर्वरक हैं कई बार उनकी आपूर्ति है बहुत सारी कठिनाई होती हैं, उस स्थिति में हमारे किसान भाई क्या करें उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं।
0: देखो एक दो चीज भ्रांति हमारे किसान भाइयों के बीच रहती है यूरिया को लेकर, एक मोटे दाने का और एक पतले दाने का। दोनों ही फर्टिलाइजर यूरिया हैं, आप इसको ऐसे समझें यूरिया का छोटा दाना बने या बड़ा दाना बने, यदि उसमें 40% नाइट्रोजन आएगी तभी जाके वो दाना उसका बनता है। जो मोटे दाने का मैक्सिमम फर्टिलाइजर होता है वो विदेश से आता है, उसको हमारा देश आयात करता है कि हमारे देश में इतना उत्पादन नहीं हो पाता। तो वो फर्टिलाइजर ऐसा नहीं है कि वो खराब है, वो क्या है मोटा दाना तो वो धीरे धीरे पिघलेगा। और जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, कोई चीज़ आप देखो आप एक साथ यदि 10 रोटी खाते हो तो अपच होगी, यही चीज़ है, वो धीरे धीरे मिलेगा पौधे। जो विदेशी टेक्नोलॉजी से बना हुआ खाद है उसको हम छोड़ के हम बस वो चाहिए कि साहब आज दिया सुबह पिघल गया, आप उसको ऐसे मत देखो। जो पड़ा है जमीनों कम से कम धीरे धीरे वो पौधे को मिलता रहेगा आवश्यकता अनुसार। तो इसमें दोनों में एक तो अंतर नहीं करें। दूसरी बात, आप जब भी यदि DAP की शॉर्टेज है तो उसकी जगह उल्टे सीधे फर्टिलाइजर नहीं दें, उसकी जगह आजकल मार्केट में बहुत NPK 16-32 बहुत सारी ग्रेडों में NPK उपलब्ध है और जो भी अपने इंडिया के मैन्युफैक्चर हैं उनको यूज लें, उनसे तीनों पोषक तत्व आपको मिलेंगे। दूसरा, जितनी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग लें, ये नहीं कि साहब लेके रख लिया दे देंगे, ऐसा गलत है। उससे क्या जो जिन किसानों को जरूरत है उस समय उनको फर्टिलाइजर नहीं मिल पाता। दूसरा, आवश्यकता के अनुसार ही दें, आवश्यकता से ज्यादा फर्टिलाइजर की उपयोग नहीं करें।
1: अच्छा, यानी कि हमारे जो किसान भाई हैं वो आवश्यकता से अधिक खरीदे भी नहीं और आवश्यकता हो उतना ही उनमें अपने खेतों में उसका देने का काम करें। इसके अलावा जैसे कई बार जैसे DAP है, SSP है या यूरिया है, उनको किस प्रकार से हमारे खेत में डालें? कई बार DAP जैसे नहीं डाल के SSP के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा जानकारी दें।
0: देखो DAP और SSP दोनों फास्फेटिक फर्टिलाइजर हैं। DAP का एक बैग और SSP की हम तुलना करते हैं, DAP की एक एक बैग की तुलना SSP से करते हैं। यदि SSP को हम DAP बनाते हैं तो लागत में भी कम होता है। DAP में तो हमें फास्फोरस और नाइट्रोजन मिलेगा, SSP में फास्फोरस भी मिल रहा है और सल्फर भी मिल रहा है, जो कि हमारा यहाँ जो सबसे ज़्यादा रबी के अंदर हम बात करें तो करीब 280,000 हेक्टेयर एरिया हमारे यहाँ सरसों की बुवाई होती है। तो सरसों की फसल के लिए सल्फर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आपके दाने की चमक और जो सरसों के तेल कंटेंट को बढ़ाने में सहयोग करता है। उस फर्टिलाइजर को हम नहीं दे पाते, क्यों? DAP देंगे तो हम SSP सल्फर तो वैसे देंगे नहीं, तो उसकी बजाय हम DAP की बजाय क्यों ना हम SSP दें। SSP आराम से अपने यहाँ राजस्थान का ही मैन्युफैक्चर है, बहुत सारा हर ग्रेड में उपलब्ध है, आराम से SSP दें, इजीली मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि DAP के चक्कर में हम SSP, कोई लोग DAP के बैगों में पैक कर देते हैं, जो कई लोग काम करते हैं, कई विभाग कार्रवाई भी करता है, पर जो हमारी भ्रांति रहती है नहीं मुझे देना है DAP है, उसको गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए। भाई हमें समय के साथ परिवर्तन, हमने विभाग आप लोगों के लिए सिफारिश कर रहे हैं तो आप जो तकनीकी ज्ञान जहाँ से भी आ रहा है उसको आपको ग्रहण करना चाहिए।
1: अच्छा, यानी कि हमारे किसान भाई DAP की जगह SSP का भी अगर प्रयोग करें तो कम लागत में और उससे अच्छा अपन उत्पादन ले सकें। इसके अलावा कुछ बात हमारे किसान भाइयों को

0: और बताएं कि जैसे खाद उर्वरक हैं जिनको हम किसान भाई कहीं से भी ले आते हैं, तो कुछ बात शुद्धता की आती है, तो शुद्धता के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह से जांच करें कि हम जो खाद लेके आ रहे हैं वो शुद्ध है।
1: डीएपी और एसएसपी में आपको फर्क करना है, आप दो चार दाने लीजिए, उसमें जो चूना होता है जो अपन जर्दा के साथ मिला खाते, उसको मिलाइए और दोनों को हथेली पर आप रगड़ोगे, यदि उसमें अमोनिया की गंध आती है तो समझिए कि वो सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी है, ना कि वो डीएपी।
0: अच्छा जी,
1: हाँ, ये इसकी पहचान होती है क्योंकि दाना दोनों का बराबर सा होता है मोर और लेस। दाने को देख के या फूंक देख कर उनसे आप किसी प्रकार का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, आपको तो बस उसमें यदि अमोनिया की गंध आ रही है तो ये डीएपी नहीं है किसी भी कीमत पे। ये प्रैक्टिकल और टेक्निकल आप इसको टेस्ट कर सकते हो, इजी वे में हर आदमी कोई ना कोई जर्दा खाता है, ये उसको आप दो चार दाने यार निकाल के दिखाना, उसमें देखोगे तो यदि अमोनिया की गंध कैसी होती है कि जैसे अपन बाड़े में पशु बांधते हैं जहाँ पेशाब की उनकी बदबू आती है, वो अमोनिया की गंध ऐसी ही अमोनिया की गंध होती है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डीएपी नहीं है, एसएसपी है।
0: अच्छा, तो इस तरह से हमारे किसान भाई निश्चित रूप से अपने उर्वरकों की जांच कर सकें और जानकारी ले सकें। और बबले जी, अंत में हम चाहें कि हमारे जो किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि हमारे मृदा का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और अच्छा वो उत्पादन अपने खेते में ले सके।
1: सबसे पहले अपन को फसल बुवाई से एक महीने पहले जब हमारे खेत खाली हो जाता है, पहले मिट्टी की जाँच कराओ, मिट्टी की जाँच करा के सोयल हेल्थ कार्ड प्राप्त करो, उसमें जो रिकमेंडेशन आ रही है कार्ड में फसल वाइज, उसके हिसाब से आप अपने प्लान करिए। उसमें दो तीन तरीका की पैकेज आती है कि आप एक इसको अपना सकते हो, दूसरा इसको, अलग अलग पैकेज होता है उसमें, तो आप उसको फॉलो करें, मिट्टी की जांच जरूर कराएं। साथ ही जो फर्टिलाइजर आप ले रहे हो किसी भी आदान विक्रेता से ले रहे हो, उसका पक्का बिल लें आप उससे, वो देगा, क्योंकि आप पैसा जो जहां आपको पक्का बिल नहीं मिलता है वहां आप संदेह कर सकते हो कहीं ना कहीं कोई माल गलत है।
0: गलत है बिल्कुल।
1: इसकी जानकारी यदि वो नहीं देता है तो हमारे संबंधित कृषि विभाग के जो संबंधित कार्मिक है, क्षेत्रीय कार्मिक है, कार्यालय, वहां आप उनको शिकायत करें कि साहब मुझे ये आदमी बिल नहीं दे रहा, जब हम उन पैसा उसके मुंह मांगे दामों का दे रहे हैं, तो पक्का बिल लेना ये हमारी सजग और जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि अपने पास बिल होगा तो वो भी हमारे लिए फर्जी माल उस पक्के बिल पे नहीं देगा। कई बार वो एस्टिमेटेड पर्ची होती है, बिल जैसा ही लगता है और उसमें इंग्लिश में लिखा रहता है एस्टिमेटेड, ऐसा नहीं है, एस्टिमेटेड अलग चीज होती है और पक्का बिल अलग होता है, उसमें एस्टिमेटेड लिखा ही नहीं होगा, उसका इनवॉइस बिल या बिल लिखा होगा, ऐसा बिल लें और वो देगा वो उसके लिए बाध्य है, और यदि नहीं देता तो उसकी संबंधित आप कृषि विभाग में उनमें आप उसकी शिकायत करें, क्योंकि ये चीज यदि अपन जागरूक नहीं होंगे तो फिर अपन को हर कोई आदमी ठग सकता है।
0: अच्छा जी, बबलेश जी, आपने हमारे जो किसान भाई हैं उनको बहुत बढ़िया जानकारी दी और निश्चित है कि हमारे जो किसान भाई हैं आपकी सलाह के अनुसार अपने खेते में कुछ काम करेंगे और कुछ सुधार करेंगे और अच्छा उत्पादन कम लागत में हमारे किसान भाई प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
2: हाँ, तो किसान भाई ये तो सुना आपने भेंट वार्ता, तो इस तरह से हमारे किसान भाई जैसे भाई उर्वरक जो होते हैं, खाद वगैरह जो होते हैं, उनका संतुलित उपयोग करके और हमारे किसान भाई जो अपनी मिट्टी है उसको सुधार कर सकते हैं उसमें। अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं आपको लोकगीत, आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

तावड़ा धीमा पड़ जा रहे। अब हमारे जो किसान भाई हैं उनको एक विशेष जानकारी देते हैं, खेत बचाओ अभियान। खेत बचाओ अभियान किसानों को अपनी खेती, मिट्टी, पानी और फसलों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य खेत की लागत कम करना और उत्पादन बढ़ाना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। खेत बचाओ अभियान के मुख्य उद्देश्य में जागरूकता कार्यक्रमों और खेत प्रदर्शन, किसान संवाद और स्थानीय अभियानों के माध्यम से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग और प्राकृतिक खेती तथा सतत कृषि उपायों के प्रति किसानों एवं नागरिकों में जागरूकता और जन भागीदारी होती है, जो उसको बढ़ाना होता है। खेत बचाओ अभियान के उद्देश्य की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, मिट्टी परीक्षण के आधार पर खेत एवं उर्वरकों का संतुलित और समन्वित उपयोग एवं रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उन पर निर्भरता जो होती है उसको कम करना होता है हमारे किसान भाइयों को, और उसमें क्या है जागरूकता पैदा करनी होती है। जागरूकता कार्यक्रम, परीक्षण और फसल प्रदर्शनों के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। वैकल्पिक उर्वरकों और संतुलित पोषक प्रबंधन पद्धतियों के उपयोग हेतु व्यापक जन जागरूकता को बढ़ाना, जैसे कि यूरिया डीपी के विकल्प के रूप में एनपी के एक एसएसपी के उर्वरकों को बढ़ावा देना है। साथ ही जैसे जैव उर्वरक, नैनो उर्वरक और जैविक खाद एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उनके उपयोग को प्रोत्साहन करना है। जैसे हरी खाद है, ढेंचा, ग्वार और चावला के माध्यम से मिट्टी के गुणों में सुधार करती है, पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होती है उसको बढ़ाना होता है। उपयुक्त तो फसल अवशेष प्रबंधन का प्रचार प्रसार और उसको प्रोत्साहन करना, पारंपरिक एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों के समन्वय से मृदा स्वास्थ्य संवर्धन और जल संरक्षण को बढ़ा देना होता है। खेत बचाओ अभियान के जो मुख्य बिंदु जो होते हैं, जो उनकी बात करें तो क्या है, प्राकृतिक खेती की विधियां जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, घन जीवामृत, पंचगव्य इत्यादि, और जैविक खेती की विधियाँ जैसे उन्नत तरीके से कंपोस्ट खाद बनाना है, बर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, बहुत सी जो विधियाँ होती हैं, और प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे प्रगतिशील किसानों के खेत पर भ्रमण और उनके अनुभव एवं किसानों से हमारे जो बातें जो होती हैं उनको साझा करना।

होता है। जैव उर्वरक तथा राइजोबियम, एजोटोवेक्टर, पीएसवीएम, अन्य जैव जो होते हैं उनको प्रोत्साहन करना होता है। नीम आधारित कीटनाशक और जीव कीटनाशकों का उपयोग हमारे किसान भाई करें। मिट्टी परीक्षण एवं उसके अन्यन को प्रोत्साहन देना होता है। गर्मी की गहरी जुताई करें, समतलीकरण और मेड़बंदी तथा इससे होने वाले जो लाभ होते हैं उनकी जानकारी के साथ साथ खेत की तैयारी है, खड़ी और आड़ी जुताई के विषय में हमारे किसान भाई उसको भी जानें। तो इस तरह से हमारे किसान भाई जो अपनी मृदा है यानी उसको सुधारें और अपने खेत को बचा सकते हैं। सोया हेल्थ कार्ड की सिफारिश के अनुसार खाद और उर्वरक जो होते हैं उनका हमारे किसान भाई उपयोग करें। तो अब जो घड़ी की सुई है वो हमारी तरफ इशारा कर रही है कि हमारा समय वो पूरा होने के लिए है। हमारे जो किसान भाई हैं उनसे आज्ञा लेते हैं। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता श्री नीरज भगत। आइए किसान भाइयों, आपसे लेते हैं आज्ञा। जय जवान, जय किसान।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आपसे कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हित की विकास यात्रा बताया है। आज श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना, किंतु इस विकास यात्रा के केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग का कल्याण रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनहित योजनाओं के जरिए सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति के विकास का काम सुनिश्चित किया जा रहा है। गौरतलब है कि

0: राज्य में 5 जून से 21 जून तक 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह के प्रथम चरण में सशस्त्र बलों और सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन में हो रहे इस समारोह में अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करने जा रहा है। ये बैठक कल से 13 जून तक इंदौर में होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की ये बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन आवासों में नल से जल, रसोई गैस और शौचालय की आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने इसे लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ा बदलाव बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में देश में समावेशी विकास को नई गति मिली है। इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और NCP शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले बैठक में शामिल हुई। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत करीब 125 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं कई क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। जयपुर के संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया की समय सीमा आज समाप्त हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 3 प्रत्याशियों ने 9 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। नाम वापसी की आखिरी तारीख 11 जून है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशियों ने आज अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण के समक्ष दाखिल किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने उन पर भरोसा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया।
2: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा देके युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते, पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि

12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए नंबरों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की विंडो 2 से 7 जून तक पूरी तरह कार्यरत थी। इस दौरान 1,60,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 3,08,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। सीबीएसई ने मीडिया पर इस पोर्टल के काम नहीं करने को लेकर चल रही कुछ खबरों पर भी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों का भ्रम दूर करते हुए बताया कि जिन छात्रों के स्क्रीन पर रोल नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, इसका कारण ये है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया था। बोर्ड ने कहा कि नियम के मुताबिक केवल वही छात्र अगले चरण के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया था। राज्य में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक

0: बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों का भ्रम दूर करते हुए बताया कि जिन छात्रों के स्क्रीन पर रोल नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, इसका कारण ये है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया था। बोर्ड ने कहा कि नियम के मुताबिक केवल वही छात्र अगले चरण के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया था। राज्य में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। शिक्षा विभाग के शासन उपसचिव आलोक जैन ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किया। इसके अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालेहा गाजी की रिपोर्ट।
1: 8 जून का दिन देश की सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। साल 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्रों के माध्यम से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारत वंशियों को एकजुट करते हुए दुनिया के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
0: राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों में आज कमी देखने को मिली और मौसम का मिजाज मिला जुला रहा। एक ओर जहां श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं पुष्कर में करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा बीते 24 घंटों में अजमेर, बूंदी, कोटा, टोंक, झुंझुनू और भरतपुर में पानी बरसा। जैसलमेर में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 11 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार जताए हैं। इस दौरान पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आने की संभावना है। 11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड़ सकती हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम जारी हैं। इसके तहत लोगों में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए रोजाना सामूहिक योग और प्राणायाम सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
2: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना, ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं, शरीर से और मन से मजबूत होते हैं, तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। चाहे हम पैदल चलें, चाहे हम सीढ़ियां चढ़ें, चाहे हम नियमित रूप से खाना खाएं, ऑयल कम करें अपने खाने के अंदर, ये सारी चीजें एक फिट इंडिया बनाता है, एक मजबूत भारत बनाता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की गई। 25 मई से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून को पर्यावरण दिवस तक चलाया गया। इस दौरान जल

0: रचनाओं की साफ सफाई, जल संरक्षण के कार्य, मरम्मत और पुनरुद्धार संबंधी कामों के साथ ही श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां रखी गईं। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने भी पौधरोपण कर पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। उन्होंने जाखम और भवर सेमला बांध का निरीक्षण कर जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर मीडिया राउंड टेबल आयोजित की गई। जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों ने परिंडे बांधे और पौधरोपण किया। जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से मीडिया एक्सपोजर विजिट का भी आयोजन रखा गया। अभियान का समापन समारोह पूर्व मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी की उपस्थिति में रखा गया। माही बजाज सागर बांध से पीपलखूट अपर हाई लेवल बहुउद्देशीय कैनाल परियोजना का निर्माण कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। 1565 करोड़ रुपए की लागत की इस अनूठी परियोजना में बिना भूमि अधिग्रहित किए पाइपलाइन डाली गई है। इसके जरिए जमीन से 3 से 4 मीटर की गहराई पर पानी बहेगा और ऊपर किसान खेती करेंगे। परियोजना के पूरा होने से प्रतापगढ़ सहित उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। लक्ष्य हासिल होने से अगली रबी फसल के लिए 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं जल जीवन मिशन के लिए जाखम बांध तक पानी पहुंचने से प्रतापगढ़ शहर और उसके 554 गांवों के अलावा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के 1899 गांवों को पानी मिलेगा। जिले के करजू और रावतपुरा गांव में इन दिनों किसानों ने आधुनिक मल्चिंग तकनीक अपनाकर नकदी फसलों की खेती शुरू की है। इस तकनीक से टमाटर और मिर्च सहित अन्य नकदी फसलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को गर्मी के मौसम में बोई जा रही फसलों से अच्छी आमदनी की उम्मीद है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बीते दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया। इस साल अब तक जिले में ये सातवीं बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि इससे पहले भी एक अन्य तस्कर की करीब 3.25 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं। पुलिस ने अभियान के तहत नौगांव के देवलदी गांव स्थित चारागाह से भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और जल संरक्षण तथा पौधरोपण कार्यों का निरीक्षण किया। इधर जिला स्तरीय बैंकिंग समीक्षा समिति की आयोजित हुई बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के उन्होंने निर्देश दिए। सांसद सीपी जोशी ने दिशा समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बार अधिक मास के चलते जिले भर में धार्मिक गतिविधियां चरम पर रहीं। मंदिरों और आश्रमों में अनुष्ठान हुए, अक्षय तृतीया पर धार्मिक स्नान और दान पुण्य किए गए। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ में आखा तीज के अबूझ सावे पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। जिले में बीते दिनों मौसम ने कई रंग दिखाए। कभी आंधी तो कभी बारिश की गतिविधियों ने जिलेवासियों को परेशान किया। वहीं बढ़ते तापमान और तपन ने भी लोगों को व्याकुल किए रखा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आई बारिश ने गर्मी का असर कम किया। इसके साथ ही प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज न गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश माए प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया। प्रदेश हूँ राज्यसभा री 3 सीटा माथ चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो भयो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 18

0: 90% आबादी ताई पहुंच। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज ने गरीबां रा भलारी विकास यात्रा बतायो है। श्री मोदी कहो कि इन दौरान देश कई बदलावां रो गवाह बनियो। प्रधानमंत्री कहो कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत सरीखा हर जतन रो मकसद जनता सारू पूरा मानु जीवनु तय करनो है। श्री मोदी कहो कि गरीब तबका री जनता री जिंदगी बेहतर बनावण माए प्रौद्योगिकी खास काम कीनो है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि वानी डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनता रा भलारी योजनावां रे जरिए सेवा कर रही है। वे आज विधानसभा परिसर में राखी जी विधायक दल री मीटिंग में बोल रहा हा। श्री शर्मा कहो कि प्रदेश में आखिरी छोर ताई रा हर एक जनारो विकास तय करियो जा रियो है। ध्यान जोग है कि राज्य में 5-21 जून ताई 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलायो जा रियो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह रा पहला दौर में सशस्त्र बलां रा और सुरक्षा कर्मचारियों रो मान कर रही है। जबरदस्त हिम्मत और समर्पण रो दर्शाव करण वाला जवाना ने ई कार्यक्रम में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण नवाजा जा रहा है। जलसा में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई हस्तियां शामिल है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स रा सदस्य देशां रा कृषि मंत्रियां री मीटिंग काल मध्य प्रदेश रा इंदौर में शुरू फैला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे कहो कि 13 जून ताई भेवन वाली मीटिंग री सदारत भारत करेला। श्री चौहान कहो कि मीटिंग में किसाना री आमदनी, काम धंधा, खेतीबाड़ी सारू कर्ज और बाजार ताई पहुंच बधावन रा जतन रे बारा में चर्चा करी जावेला।
2: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तेज हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आम मकाना माए नल, पानी, रसोई गैस और शौचालय रा बुनियादी सुविधा मुहैया कराई चिया है। वे इनने गरीब परिवारा सारू मोटा बदलाव बतायो। केंद्रीय मंत्री कहो कि लारला 12 साल में देश में सगला रो विकास और तेजी उमफियो है। विपक्षी पार्टियां रा इंडिया गठबंधन री आज नई दिल्ली में मीटिंग हुई। इन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस रा आला नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी रा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस री अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रा नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट री सुप्रिया सुले शामिल थिया। जयपुर विकास प्राधिकरण री ओरू आज जयपुर शहर में गैर कानूनी कब्जा हटावन री मोटी कार्रवाई करी जी। नंदपुरी अंडरपास रेलवे लेन रे बराबर री सड़क ने 80 फीट चौड़ी करण सारू चलाई जिया। ई अभियान रा तहत 125 बत्ता गैर कानूनी तौर करी जिया बनाई चुनाई रा काम हटाई जिया। ई दौरान एहतियातन 3000 बत्ता पुलिस वाला तैनात करी जिया, जदका कई हलका माए मोबाइल और इंटरनेट जुड़ी सेवाएं बंद राखी जी। जयपुर राज संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार का नियम जारी।

0: हो कमरे मुजब बेगोई आ हल्का माय इंटरनेट पाछो चालन दी संभावना है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव सारू प्रदेश में तीन सीटा माथे चुनाव बाबत पर्चा दाखिल करने की मियाद आज पूरी फेगी। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बतायो कि प्रदेश में तीन उम्मीदवार नौ पर्चा दाखिल कीना। भारतीय जनता पार्टी री ओर डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर आज नाम पाना रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण सामी पेश कीना। ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, अर्जुन तारा और कई नुमाइंदा मौजूद हा। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री पूनिया वा माथे भरोसो करण सारू भाजपा रा केंद्रीय नेतृत्व रो आभार जतायो।
1: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा दे के युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते, पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: कांग्रेस पार्टी री ओर नीरज डांगी पहले पर्चो दाखिल कर चुका है। नाम 11 जून ताई पाछा लिया जा सके है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इस साल 12वीं कक्षा री परीक्षा सारू नंबरन रो सत्यापन करण और कॉपियां उजू जंचावन सारू अर्जी देवन री विंडो 2-7 जून ताई लगातार चालते रहवन रो दावो कीनो है। बोर्ड रे मुजब इन दौरान 1,60,000 बत्ता विद्यार्थी 3,08,000 बत्ती कॉपियां सारू अर्जी दीनी। CBSE भ्रम दूर करता थका बतायो के रोल नंबर नॉट फाउंड री जानकारी रो कारण ई प्रक्रिया रा पहला दौर माय कॉपी री फोटो कॉपी लेवन री अर्जी नी देवनु हो। बोर्ड रे मुजब नियमा रे मुताबिक कॉपी री स्कैन कॉपी हासिल करण सारू अर्जी देवन वाला ही अगला दौर सारू पात्र वह है। राज्य री सरकारी स्कूलां माय गर्मी री छुट्टियां 28 जून ताई रहवेला। शिक्षा विभाग रा शासन उप सचिव आलोक जैन री ओर जारी हुकम रे मुजब गर्मी री छुट्टियां 17 मई 20 जून ताई 35 दिन री करी ची ही, जो अब वधार 43 दिन री कर दी री ची है। हुकम रे मुजब संस्था प्रधान री ओर एक री बजाय अब 2 दिन री छुट्टी दी जा सकेला। आज आकाशवाणी रा गौरवशाली 90 साल पूरा फेंक्या। साल 1936 माय आज ही रा दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऑल इंडिया रेडियो नाम दियो चियो हो। पेश है समाचार कक्ष डॉक्टर सालेहा गाजी री रपट।
2: साल 1956 माय इन रो आकाशवाणी नाम दियो जियो। आज देश भर माय आकाशवाणी रा 551वा केंद्रा रे जरिए 23 भाषावा और 146 बोलिया माए कार्यक्रम प्रसारित करिया जावे है, जो देश री 98% आबादी ताई पूगे है। इस आगे ही आकाशवाणी रो विदेश सेवा विभाग दुनिया रा 172 देशा माए भारत री आवाज पुगारियो है। आकाशवाणी रो समाचार सेवा प्रभाग बहुजन हिताए बहुजन सुखाए रा आदर्श सागे रेडिया प्रसारण रा सब ऊंचा मानकारी पालना करता थका 2400 घंटा सगली भाषावा और बोलिया माए समाचार और समाचारों जुड़िया कार्यक्रम प्रसारित करे है।
0: राज्य रो कई हल्का माए आंधी बारिश री हलचल आज थोड़ी कम रही। इन कारण श्रीगंगानगर माए पारो 44 डिग्री सेल्सियस ताई पूग गयो। जैसलमेर माए जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दूजिकानी अजमेर कने पुष्कर माए करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। लाडला 24 घंटा माए अजमेर बूंदी कोटा टोंक झुंझुनू और भरतपुर माए में बरसियो। मौसम विभाग 11 जून ताई आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए कमी रा आसार जताया है। इस दौरान उगनी और उत्तराध उगनी हलका रे अलावा मौसम सुखो रेवन री संभावना है। रजरा आतुनी हलका माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चटबारा आसार है। 21 जून ने मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम चल रहा है। इन तेत जीवन रा स्वस्थ तरीका ने बधावो देवन रा मकसद रोजिना योग और प्राणायाम रा सत्र रख्या जा रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनताओं आ कार्यक्रम माए भागीदारी करण री अरज कीनी है।

0: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं शरीर से और मन से मजबूत होते हैं तो परिवार मजबूत होता है, इससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है।
1: आखिर में खास समाचार एक कर फेरू सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लाडला 12 साल रा कामकाज न गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तेज हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया। प्रदेश हूँ राज्यसभा री 3 सीटा माथा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करन रो काम पूरो भियो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 98% आबादी ताई पहुंच। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।

हेलो, 1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। आइए अब आपको बता देते हैं आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

देशकान का समय रहेगा शाम 7:05 का, शाम 7:10 का समय रहेगा विशेष कार्यक्रम। सरकार के 12 वर्ष विषय रहेगा किसान सशक्तिकरण, आकाशवाणी दिल्ली से। फिल्म संगीत का समय रहेगा रात 7:45 का, रात 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष के अंतर्गत काव्य गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे श्री प्रवेंद्र पंडित, श्री धर्मेंद्र कुमार और श्रीमती सुनीता शर्मा। लोक संगीत का समय रहेगा रात 8:25 का, आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का समय रहेगा रात 8:45 का। विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का समय रहेगा रात 9:15 से। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। और इसी के साथ हमारी आज की सभा संपन्न होगी रात 11:05 पर। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको बता देते हैं कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

हिंदी में समाचारों का समय रहेगा सवेरे 6 बजे, आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम बंधनवार का समय रहेगा सवेरे 6:05 पर। 6:35 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान, संगीत सरिता आप सुनेंगे। सवेरे 6:45 पर कार्यक्रम नमस्कार अलवर का समय रहेगा सवेरे 7 बजे। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सवेरे 7:30 पर और शाम 7:45 पर। समाचार प्रभात का समय रहेगा सवेरे 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे सवेरे 8:15 पर। NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा सवेरे 8:30 का।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे सवेरे 9 बजे और दोपहर 1 बजे आकाशवाणी जयपुर से। विविध भारती के कार्यक्रमों का समय रहेगा सवेरे 9:10 पर, 10:01 पर, 11:01 पर, दोपहर 12:16 पर, 1:05 पर और 2:30 पर। अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से, और साथ ही आप सुनेंगे 2:15 पर दोपहर समाचार कार्यक्रम। महिला जगत का समय रहेगा शाम 5 बजे, 5:30 पर आप सुन सकेंगे युवाणी कार्यक्रम।

किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6 बजे। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6:30 और 6:45 पर आकाशवाणी जयपुर से। विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष, विषय आर्थिक विकास, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। समय रहेगा शाम 7:10 का। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15 पर। 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का आकाशवाणी दिल्ली से। विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का समय रहेगा रात 9:15 से। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। और इसी के साथ हमारी कल की सभा भी संपन्न होगी रात 11:05 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए अब आपको सुनवाते हैं देशगान।

देशकान यहीं संपन्न करते हैं। अब आपको सुनवाते हैं विशेष कार्यक्रम श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, विषय है किसान सशक्तिकरण। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी अलवर से, आकाशवाणी दिल्ली से, माफ कीजिएगा,

0: Now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants are Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP.
1: से तो आमदनी का साधन भी मशरूम की खेती को हम कह सकते हैं. तो जहां तक आपने झिझक वाली बात कही, तो झिझक वाली इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि हमारे जो युवा हैं और हमारे किसान भाई हैं, मशरूम की खेती करने से पहले एक प्रशिक्षण जरूर लेंगे. अगर प्रशिक्षण ले लेते हैं किसी भी सरकारी संस्था से या राज्य सरकार के बागवानी विभाग हैं या और कोई भी संस्था है वहां से, तो प्रशिक्षण के बाद में मशरूम का कार्य की शुरुआत करेंगे तो इसमें उनकी झिझक भी खत्म हो जाएगी और फिर इसमें कोई भी उनके लिए रिस्क वाली बात तो सामने आएगी ही नहीं.
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि यदि हम किसी भी कार्य को प्रशिक्षण से लेकर के शुरू करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो नुकसान है वो नगण्य हो जाता है, अच्छा लाभ मिलता है. तो प्रशिक्षण के लिए हमारे साथी कहां संपर्क कर सकते हैं जो मशरूम के लिए प्रशिक्षण चाहिए, तो कैसे उनकी पहुंच वहां तक हो सकती है?
1: हमारे किसान भाई जो हैं अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में देश के लगभग प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहां कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें. उसके साथ ही उनका जो जिला बागवानी विभाग है तो वहां जाकर के भी संपर्क करेंगे, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जो बागवानी विभाग है वो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम मशरूम के लिए आयोजित करते हैं, साथ में कृषि विज्ञान केंद्र भी जो है मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए वहां पर वैज्ञानिक पद्धति से मशरूम की खेती को सिखाने के लिए अपने युवाओं के लिए और साल भर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, तो वहां प्रशिक्षण के लिए जाए. या फिर उनके और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है सोलन में, वहां पूरे देश के किसान भाई वहां से जाकर के भी प्रशिक्षण लेते हैं, तो प्रशिक्षण की कोई किसानों के लिए मुश्किल नहीं है, वहां से प्रशिक्षण आसानी से प्राप्त करके मशरूम की खेती को वो अपना सकते हैं.
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब बात आती है कि प्रशिक्षण भी ले लिया और हम कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है सभी को, अगर कोई भी हम नया काम करेंगे तो पैसे की बड़ी दिक्कत है. कहीं ये लगेगा कि भाई आरंभ हम कार्य कर रहे हैं तो इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, कुछ मैं बचा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, तो इसमें कितना खर्चा शुरू में हो सकता है कि अगर हम कोई कार्य शुरू करें?
1: मशरूम की खेती का कार्य करने के लिए दो तरह का प्रक्रिया करनी होती है. जैसे कि अगर हमारे किसान भाई प्रशिक्षण के बाद में उच्च तकनीकी युक्त मशरूम का घर बना रहे हैं तो उसके लिए बागवानी विभाग की योजनाएं हैं, उसमें 24 लाख रुपए से लेकर के 40-50 लाख रुपए तक का भी उनको एक अनुदान राशि का भी उसमें प्रावधान है, लेकिन उसके लिए प्रशिक्षण बहुत मस्ट है. जब प्रशिक्षण ले लेंगे तो तभी वो अनुदान राशि, क्योंकि उसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. अगर हमारा एक साधारण किसान भाई है जो कि इतना बड़ा अनुदान नहीं लेना चाहते हैं या किसी कारणवश वो ले नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमारे किसान भाई कम लागत से भी मशरूम का घर, जिसको गांव के स्तर पर झोपड़ी कहा जाता है, एक साधारण सी झोपड़ी बना करके जिसका साइज हमारे किसान भाई अपनी उपलब्ध जगह के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि 15 फीट 20 फीट चौड़ा है और 30-40 फीट लंबाई वाला आकार का कहीं भी उनके घर के आसपास में खाली

0: जगह पड़ी हुई है या उनके पास में अतिरिक्त कोई कमरा है, बरांडा है, उसके अंदर भी वो मशरूम का घर बना करके, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि खुली जगह पर मशरूम की खेती हम नहीं कर सकते हैं
1: जी।
0: उसके लिए उसको पूरा बंद करना पड़ेगा, और बंद करने के लिए चाहेंगे साधारण सी घास फूस की टाटी, धान का पुआल है या सरगंडा का जो फूस होता है, उससे भी हमारे किसान भाई एक कम लागत में मशरूम का घर तैयार कर सकते हैं। फिर उस मशरूम घर के अंदर में लगभग 2.25 फुट की अंतर पर अलग अलग रैक्स क्रिएट किए जाते हैं, जहां पर हम मशरूम के बैग या मशरूम का जो खुला सिस्टम है उसके आधार पर भी बेड बना करके उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक अगर 15 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा एक मशरूम का घर बना लिया, उसमें 6 तह वाला रैक बना लिए, तो उसमें लगभग जो है 500 तक आराम से मशरूम के बैग आ जाते हैं। उनको बैग को रख करके हमारे किसान भाई उसमें मशरूम की खेती को सुचारू रूप से कर सकते हैं।
1: यानी कि ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि केवल 15 फीट से 20 फीट के कोई भी एक कमरे में हम ये शुरू कर सकते हैं, तो इसमें खर्चा अपने ऊपर, यानी कि जितना बड़ा काम करना चाहते हैं उतना अधिक खर्चा, लेकिन अधिक में कहीं ना कहीं सरकार भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, वो अनुदान के रूप में आपकी सहायता निश्चित रूप से करती है। अब बात आती है, जैसे आपने कहा कि हमने मशरूम का घर बना लिया, कोई कमरा है या कोई झोपड़ी है, लेकिन अब उसमें जो आवश्यकता होगी जो कंपोस्ट है के लिए क्या कुछ हमारे किसान भाइयों को करना पड़ेगा?
0: मशरूम के लिए मुख्य तौर पर इसमें तीन जो सामग्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मशरूम के लिए कंपोस्ट बनाना, जो एक प्रकार की खाद होती है, तो जिसको हम मशरूम की कंपोस्ट कहते हैं। दूसरा है मशरूम का बीज
1: जी।
0: तीसरा है मशरूम के लिए केसिंग सामग्री। तो ये तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो मशरूम का बीज है, नियर बाई कहीं ना कहीं जिला स्तर पर कोई इकाई होगी, मशरूम बनाने वाली कोई प्रयोगशाला होगी, तो वो आराम से उन जिले के अंदर ही या आसपास कोई विभाग है, बागवानी विभाग है, जहां भी हमारे किसान भाई रहते हैं, निश्चित रूप से वहां पर बीज मिलने की संभावना होती है। अब इसमें बाकी जो दो सामान है, चाहे मशरूम की कंपोस्ट है या फिर केसिंग सामग्री है, इसको हमारे किसान भाई आराम से अपने फार्म पर जो उत्पादित जो अवशेष है, फसलों के अवशेष है और पशुओं का जो गोबर है उसकी खाद है, जो गेहूं का भूसा है, उसी से सारे सामान आसानी से तैयार हो जाते हैं। जब हमारे किसान भाई किसी प्रशिक्षण में जाते हैं, तो प्रशिक्षण के दौरान उनको सारी प्रक्रिया समझा दी जाती है कि इसमें कंपोस्ट बनाते समय कितनी कितनी मात्रा में, बहुत सारे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जैसे गेहूं का चोकर है, यूरिया है, जिप्सम है, म्यूरेटा पोटाश है, उनको भी एक निर्धारित मात्रा में उसमें कंपोस्ट बनाते समय समायोजित किया जाता है, और लगभग 28 से 30 दिन की प्रक्रिया में और कम खर्चे में, इसके लिए कोई किसी प्रकार के उच्च तकनीकी युक्त घर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कंपोस्ट आराम से बना सकते हैं। लगभग कंपोस्ट में 6 से 8 पलटाई करनी होती है 3-3 दिन के अंतर पर, और फिर वो हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। ये प्रक्रिया शुरुआत में थोड़ा सा एक किसान के लिए को मेहनत ही कह सकते हैं, लेकिन एक साधारण सी मेहनत है, इसमें कोई विशेष वो बात नहीं है
1: जी। डॉक्टर साहब, जब बात आती है कि मशरूम के लिए कंपोस्ट भी तैयार है, बीज भी मिल गया है और हमने लगा दिया, तो ये फसल लगभग कितने दिन की होती
0: है? ये फसल लगभग ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की फसल होती है। एक बार अगर मशरूम आपने लगा दिया, मशरूम के घर में मशरूम आना शुरू हो गया, तो देखा तो ये आता है कि उसमें 3 या 4 बार ही अच्छा फ्लश आता है। फ्लश का मतलब अच्छी तरह से फसल का बूम आता है, तो 3-4 बार में मशरूम का अधिक से अधिक प्रोडक्शन जो है वो मिल जाता है। उसके बाद में मशरूम का जो फसल है ना वो थोड़ी कम आने लगती है। तो अगर किसान भाइयों के पास में टाइम है तो कम रूप में भी फसल को लेते हुए फिर अपनी फसल को आखिरी की तरफ ले जा सकते हैं, या उनको फिर मौसम अगर अनुकूल है और नई फसल लगानी है, तो हमारे किसान भाई जो है उस घर को फिर खाली करके फिर उसमें दूसरा भी क्रॉप उसमें लगा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि सामान्य फसलों में कीट की और रोग की बड़ी एक समस्या है, तो क्या मशरूम के उत्पादन में भी या मशरूम की फसल में भी ये कीट और रोग प्रबंधन पर हमें क्या ध्यान देना होगा, ये आते हैं या नहीं आते?
0: मशरूम की खेती में कीड़े और रोग भी आते हैं, लेकिन उसके आने की वजह मुख्य रूप से यही होती है, अगर मशरूम घर के अंदर में अच्छी तरह से साफ सफाई है, कंपोस्ट को आपने ठीक तरीके से बनाया है, उसमें आवश्यक सामग्री को सही ढंग से समायोजित किया है, तो उसमें कीड़े और पतंगों की आने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। कई बार ये देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई है ना, मशरूम घर को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, उसमें एयरेशन नहीं होता है, ताजा हवा नहीं उसमें जाती है, तो उस स्थिति में उसमें फिर कोई भी समस्या, बीमारी है, वायरस वाली है या बैक्टीरिया वाली बीमारी आ जाती है, या उसमें माइट है या दूसरे जो मक्खी है वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जब उसमें कोई मशरूम के घर के अंदर का मौसम सही नहीं होगा तभी ये समस्या आती है। तो वो समस्या नहीं आए उसके लिए हमारे किसान भाइयों के लिए साफ सफाई का मशरूम घर के अंदर में विशेष ध्यान रखना है। कोई किसी प्रकार का अंदर में धूम्रपान नहीं करना है, कोई किसी प्रकार की अंदर में गंदगी नहीं छोड़नी है, गंदे पैरों से अंदर में नहीं जाना है और गंदे हाथों से कोई भी मशरूम के कार्य को, फसल की कटाई को नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं

0: बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों के लिए कि जब भी मशरूम के घर में जाएं, उससे पहले आप अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ कर लें, पैरों को साफ कर लें और अंदर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर मशरूम तोड़ते समय मशरूम की खाद है, मशरूम के कोई भी प्रोडक्ट है, वो जमीन पर नीचे गिर जाता है तो अंदर में उसको एक अलग से वहां पर सफाई का ध्यान रखें, अंदर में कोई झाड़ू भी लगानी पड़ती है तो मशरूम घर के अंदर में उसी कार्य के लिए एक झाड़ू अलग से होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है परे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि कीड़े बीमारी इसमें तभी आएंगे जब हमने सावधानी प्रॉपर बरती नहीं है। तो अगर कीड़े बीमारी इसमें आ जाते हैं तो फिर उसमें हमारे कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उसमें किसी प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो तैयार फसल पर कोई किसी प्रकार के कीटनाशक के छिड़काव की मैं सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक दिन के बाद मशरूम की तुड़ाई होती है और मशरूम का जो फल उसमें 90% पानी की मात्रा होती है
1: जी।
0: तो उसमें कीटनाशक अवशोषित हो जाते हैं, वो फिर ऐसा मशरूम मार्केट में जाता है, वो हमारे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक नहीं होता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अगले प्रश्न को यहाँ जन्म दे दिया कि उपभोक्ता और मार्केट। हमारे किसान भाई बहन मान लीजिए कि वो खेती कर रहे हैं और आपकी दी हुई सलाह के कारण उनका उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, तो अब इसमें वो अपने लिए कैसे बाजार आसानी से चुने कि उन्हें उपभोक्ता मिले और अच्छा उत्पादन जो है वो बाजार तक जाए और उनकी जो कहीं ना कहीं आमदनी है वो बढ़ जाए।
0: देखिए, हमारे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन प्रकार की मशरूम का बहुत ज्यादा विशेष चलन है। नंबर वन पर तो बटन मशरूम आती है, जिसको हम श्वेत खुम्भ भी कहते हैं, तो ये बटन मशरूम होगी। दूसरा दूधिया मशरूम है, तीसरा एक जो है ढिंगली मशरूम है। इन तीनों प्रकार की मशरूम में सबसे ज्यादा जो चलन में है मशरूम वो बटन मशरूम में है। और ये बटन मशरूम मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में 12 महीने मार्केट में मिल जाती है। दूसरा, ये हर घर की ये आवश्यकता बन चुकी है। तो मशरूम कि बिक्री वाली जहां तक बात है, बिक्री को लेकर के कोई भी किसी प्रकार की भी समस्या नहीं है, क्योंकि गांव में भी आज के टाइम में मशरूम का अधिकतम भाग गांव में ही सेल हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि 50% अगर आपके पास में 5 क्विंटल मशरूम निकली या छोटी यूनिट से 2 क्विंटल मशरूम निकली है तो उसका आपका 50% भाग जो है मशरूम का लोकल गांव में या लोकल जो हमारे सब्जी विक्रेता है गांव में, सब्जी की दुकानें होती हैं वहीं पर के माध्यम से बिक जाती है। और फिर नियर बाई हमारे आसपास के क्षेत्र में जो आपका लोकल मार्केट है जहां पर सब्जी मंडी होती है, तो सब्जी मंडी में जाकर के आप इसको आसानी से बिक्री कर सकते हैं, जैसे वहां पर और सब्जियां बिकती हैं इस तरह से। तो मशरूम की बिक्री को लेकर के सभी किसान भाइयों को एक मैसेज है कि बिक्री को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से इसकी बिक्री हो जाती है और अच्छे दाम पर बिक्री होती है इसकी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांवों में मशरूम उत्पादन की संभावनाएं विषय पर डॉक्टर भारत सिंह वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक रहे हैं शिकोहपुर, उनसे बातचीत कर रहे थे अमित तेवतिया। तो साथियों, ये विशेष जानकारी आपने पाई है। इसके अलावा आप जो है कि कई तरह के गैर सब्जी यानी औषधि मशरूम की भी खेती कर सकते हैं, उससे मुनाफा कमा सकते हैं। और आइए इसके साथ अब आपका कराते हैं मनोरंजन।
3: सुनवाते हैं रेनू बर्मन की आवाज में ये

अभी आप सुन रहे थे सरवर नीर का किस्सा, शीशपाल सिंह भाटी की आवाज़ में। और इसी के साथ हम अपने ग्रामीण भाइयों बहनों को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की गुजारिश करते हैं। सभी ग्राम

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रसारण है, मीडियम वेव 366.3।
1: तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के, और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने दिसंबर 25 तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
2: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद, कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन, 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी, द क्वालिटी ऑल्सो, द फिशरीज, द एलाइड सेक्टर्स, दे हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड, एंड इन फैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री, एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल?
3: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
2: जी।
3: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहाँ हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
2: पैक्स जो कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज
3: जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में

0: अब ये कंप्यूटराइज हो गई है, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी, उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो
1: जी
0: एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे
1: जी
0: यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड, और वो भी डिजिटाइज्ड है। यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं, तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथेन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए,
1: जी
0: यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं, इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया, एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से सारी चीजें हो रही है। मेगा फार्म फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए, और वो
1: जी
0: फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी
0: आप कुछ
1: जरूरत के
0: ऐसे
1: अनुसार
0: चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं,
1: जी
0: और ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टरबाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए,
1: जी
0: ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब

अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, और डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहाँ पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को

0: डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओ होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
0: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं। एज ए बिजनेस एंटिटी उनको बिजनेस बढ़ाना है, और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
0: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं। और अपने फार्मर को कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में आपको। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views, and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years. Can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
0: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past 2 decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range,
1: right.
0: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
0: so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, Member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, Senior Journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति

सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

3.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म नमक हलाल के साथ। गीतकार है अनजान और संगीत है बप्पी लहरी का।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म नरसिम्हा से ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष के अंतर्गत काव्य गोष्ठी। प्रतिभागी कवि है श्री प्रवेंद्र पंडित, श्री धर्मेंद्र कुमार, श्रीमती सुनीता शर्मा।
1: कवि गोष्ठी में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आकाशवाणी निरंतर अनवरत चलते हुए आज से पहले या आज तक जनमानस के जहन में छाई हुई है और अपने 90 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुकी है। आकाशवाणी के समस्त कर्मचारियों को, पुराने और नए और जो सेवानिवृत्त हो गए, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। ये बहुत एक अच्छा अवसर है। ये आकाशवाणी ने आम जन को गांव, शहर, राज्य, देश विदेश सभी जगह मनोरंजन भी दिया, सूचनाएं भी दी। तो एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। और आज की कवि गोष्ठी में मैं आपको आज जो हमारे साथ रचनाकार प्रस्तुत हैं उनका एक एक का परिचय देता हूं। आज हमारे मध्य मातृशक्ति में हैं सुनीता शर्मा जो अलवर की निवासी हैं। दूसरे हैं श्री धर्मेंद्र शर्मा धीर जो गोविंदगढ़ से आज आकाशवाणी के स्टूडियो में काव्य पाठ के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं स्वयं प्रवेंद्र पंडित अर्थात प्रवेंद्र कुमार शर्मा मेरा पूरा नाम है। मैं भी अलवर राजस्थान से हूँ। हम इस कविगोष्ठी को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले माँ शारदे के सृष्टनों में चार पंक्तियाँ प्रस्तुत करेंगे, वो मैं प्रस्तुत किए देता हूँ। कि सुनो वीणा पाणी जग माता कल्याणी देवी कर उपकार, सद मति को प्रसार दे शब्द शब्द तुलसी कबीरा की जुबान बने मैया हारु लेखुनी को ऐसा व्यवहार दे कि आत्मा का तार तारो अधेरों का प्यार बने गीत छंद मुक्तक को शुभ संचार दे और मैया तेरे लाल संसार में मिसाल बने सोच को प्रवीण कर ज्ञान को संवार दे सोच को प्रवीण कर ज्ञान को संवार दे। माँ शारदे की शब्द स्तुति के उपरांत मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ मातृशक्ति के रूप में सुनीता शर्मा श्रुति को अपने काव्य पाठ के लिए। सुनीता शर्मा।
2: नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा बेटियों के ऊपर कुछ माहियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
1: स्वागत है।
2: मन

0: उपहार।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: नित हंसते खिलते रहो, नित हंसते खिलते रहो, बोलो मीठे बोल।
1: बहुत बढ़िया।
0: गुमसुम रहमत काटिए, जीवन है अनमोल।

0: बहुत बढ़िया,
1: सच मानो लक्ष्य से होगा नहीं मिलाप। धन्यवाद।
0: और ये बहुत अच्छी दोहों की प्रस्तुति की आपने, उसमें मौसम के विषय में भी जानकारी दी, मानव के व्यवहार के विषय में भी जानकारी दी, और समसामायिक विषयों पर बहुत अच्छा आपने इसको विश्लेषण किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अब अगले रचनाकार यानी प्रस्तुतकर्ता कवि के रूप में धर्मेंद्र धीर को आमंत्रित करता हूँ, जो ब्रजभूमि से संबंध रखते हैं, उनका जिनका जन्म ब्रजभूमि में हुआ है। अतः मैं चाहूँगा कि वो कुछ ऐसी छाप तो छोड़े अपनी चार पंक्तियों में जहाँ ब्रज के ब्रजराज का वर्णन आ जाए। तो धर्मेंद्र धीर जी को आमंत्रित करता हूँ।
2: आकाशवाणी के सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। गुरु जी ने मेरा तारुप करा कि मैं ब्रज से बिलोंग करता हूँ, तो ब्रज के ऊपर, ब्रज के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पहले चार पंक्तियां, उसके बाद में कुछ गजल प्रस्तुत करूंगा।
0: स्वागत।
2: कहता हूं कि जब माधव मेरा मीत है हर पल मेरी जीत है, कि जब माधव मेरा मीत है हर पल मेरी जीत है, गम गैरों के लिए है गम अपने लिए तो गीत है। कि जब माधव मेरा मीत है हर पल मेरी जीत है, गम गैरों के लिए है गम अपने लिए तो गीत है। और हर उलझन की सुलझन यारों, हर उलझन की सुलझन यारों, मुरली मधुर संगीत है, राधा की सांसों का सरगम, मीरा का मन जीत है।
0: वा, वा, वा, वा।
2: जब माधव मेरा मीत है हर पल मेरी जीत है, गम गैरों के लिए है गम अपने लिए तो गीत है।
0: अत्युत्तम, अत्युत्तम।
2: क्योंकि मैं गजल कहता हूँ तो एक मतलब एक शेर से अपनी आगाज करता हूँ, शेर व शायरी का, कि नफरतों का दौर है थोड़ा ईमान होना चाहिए, कि नफरतों का दौर है थोड़ा ईमान होना चाहिए, फरिश्ता बनने की कोशिश न करें हमें इंसान होना
0: चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: कि नफरतों का दौर है थोड़ा ईमान होना चाहिए, फरिश्ता बनने की कोशिश न करें हमें इंसान होना चाहिए, और कुछ भी कह देना तो तौहीन है सुखन की।
0: वाह।
2: कि कुछ भी कह देना तो तौहीन है गजल की, मेरी कोशिश है गजल में उनवान होना।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अर्ज
2: क्या है कि एक एक हर्फ एक एक लफ्ज में मर्म रखा जाए। कहता हूँ कि एक एक हर्फ एक एक लफ्ज में मर्म रखा जाए, पहले इंसानियत बाद में धर्म रखा जाए।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
2: एक एक हर्फ एक एक लफ्ज में मर्म रखा जाए, पहले इंसानियत बाद में धर्म रखा जाए, और इबादतों का असर भी होता है रब के दर पे। इबादतों का असर भी होता है रब के दर पे, मगर इबादतों से पहले कर्म रखा जाए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: कि बद्दुआओं से डर लगता है न अभिशाप से डर लगता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: कि बद्दुआओं से डर लगता है न अभिशाप से डर लगता है, मैं जब भी गुनाह करता हूँ मुझे अपने आप से डर।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
2: कि बद्दुआओं से डर लगता है न अभिशाप से डर लगता है, मैं जब भी गुनाह करता हूँ मुझे अपने आप से डर लगता है, और जमाने की मुश्किलात से मैं कभी खौफ ज्यादा नहीं होता। कि जमाने

0: कि मुश्किलात से मैं कभी खौफ ज्यादा नहीं होता, क्योंकि आज भी मुझे अपने माँ बाप से डर लगता है।
1: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत
0: बढ़िया। गुनाहों को लिहाफ करते रहते हैं इंसानी फितरत के ऊपर से, कि गुनाहों को लिहाफ करते रहते हैं, खुद को खुद माफ करते रहते हैं, और धूल है कि हमारे चेहरों पे जमा होती है, और एक हम हैं कि आईने साफ करते
1: रहते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: एक गजल और उसके बाद में, सिर्फ गुल ही नहीं खंजर भी जरूरी हैं, अच्छे या फिर बुरे मंजर भी जरूरी हैं, केवल अल्फाजों के कह देने से काम नहीं चलता, शायरी करने के लिए तेवर भी जरूरी है।
1: बहुत बढ़िया।
0: कि अंधेरी रातों को खलता रहता है, कि अंधेरी रातों को खलता रहता है, एक दिया जो रात भर जलता रहता है।
1: बहुत बढ़िया।
0: कि अंधेरी रातों को खलता रहता है, एक दिया जो रात भर जलता रहता है, और मंजिल उसे ही नसीब होती है थकन में, कि मंजिल उसे ही नसीब होती है सफर में, थकन के बावजूद जो चलता रहता है। और यकसा तो मौसम भी नहीं बनाया खुदा ने, कि यकसा तो मौसम भी नहीं बनाया खुदा ने, फिर ये तो इंसान है बदलता रहता है, और उसे गिरा हुआ नहीं कहते धीर, कि उसे गिरा हुआ नहीं कहते धीर, गिरकर पढ़कर जो संभलता रहता है।
1: बहुत बढ़िया।
0: अंतिम गजल कि टूटकर सामने आ न बिखर कर सामने आ।
1: वाह।
0: कि टूटकर सामने आ न बिखर के सामने आ, तू जब भी मुश्किलों में हो निखर के सामने आ।
1: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।
0: कश्ती की डगमगाहट से यूं ना हैरान हो, कि कश्ती की डगमगाहट से यूं ना हैरान हो, मांझी है अगर तू सच्चा भंवर के सामने आ।
1: वाह वाह वाह।
0: और शिकस्त की शिकन से बाखबर हैं जो लोग, कि शिकस्त की शिकन से बाखबर हैं जो लोग, कहते हैं वो ही डरकर मेरे घर के सामने आ। और है नाज तुझको जिस बुलंदी पे आसमां, कि है नाज तुझको जिस बुलंदी पे आसमां, से एक चिड़िया कह रही थी मेरे पर के सामने आ।
1: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने अपनी गजलों में बहुत ही विषय, अनेक विषयों को समेटा, और सच पूछो तो जो मानव का मूल स्वभाव है, जो उथल पुथल भरी सोच होती है, उसको आपने बहुत ही सटीक तरह से उसका चित्रण किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद आपके काव्य पाठ के लिए। अब मैं अंतिम स्पर्श के लिए, इस कवि गोष्ठी के लिए मैं प्रवेंद्र पंडित अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। अभी अभी विश्व पर्यावरण दिवस गुजरा है, तो निश्चित रूप से मैं एक पेड़ का जो दर्द है
0: जी।
1: तो पेड़ हमारे लिए, वृक्ष जो कितना शुभ होता है, हमारे लिए कितना काम का होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, पूरी सृष्टि के लिए वृक्ष का क्या महत्व है, लेकिन हम लोग निरंतर दोहन कर रहे हैं, तो एक वृक्ष हमें चेतावनी दे रहा है, तो उसको गीत के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूँ कि वृक्ष हमें किस तरह से चेतावनी दे रहा है।

मानव समझ न पाया मैं बेचारा, मैं देकर फल फूल नहारा, मैं देकर फल फूल नहारा। और क्या क्या सहन कर लेता है वृक्ष, सर्दी में पाला बारिश में नित्य मेघ का वेग सहा है, सर्दी में पाला बारिश में नित्य मेघ का वेग सहा है, तूने ही निज मुख से मुझको धरती का उपहार कहा है, तूने ही निज मुख से मुझको धरती का उपकार कहा है, पहले सच थी या अब सच है, पहले सच थी या अब सच है,

0: बहुत बढ़िया
1: फूल नहारा, फिर भी तूने मुझको मारा, मैं देकर फल फूल नहारा। देखो अगला बंदा इसका,
0: स्वागत है।
1: तेरे अति दोहन के कारण बांझ हो गई अनगिन नदियां, तेरे अति दोहन के कारण बांझ हो गई अनगिन नदियां। परिवर्तन है या विनाश है, परिवर्तन है या विनाश है, रो रो कहती बीती सदियां।

परिवर्तन है या विनाश है, रो रो कहती बीती सदियां, पनघट रूठे तट सूने हैं, पनघट रूठे तट सूने हैं, जिस पनघट रूठे तट सूने हैं, नाम शेष है केवल अब तो, पनघट रूठे तट सूने हैं, नाम शेष केवल है अब तो, उसको जी भर लूटा तूने, उसको जी भर लूटा तूने, जिसने तुझको सदा संवारा, मैं देकर फल फूल नहारा। अगला बंद है, आया तू जब थका पथिक बन, मुझसे ही तो छांव मिली थी, आया तू जब थका पथिक बन, मुझसे ही

मिली थी। रे पालक क्यों बदक हो गया, रे पालक क्यों बदक हो गया, देख कैसी परिवर्तन है। रे पालक क्यों बदक हो गया, यह भी कैसा परिवर्तन है। अचरज है क्यों आज हो गया, अचरज है क्यों आज हो गया, तेरा मीठा मन घट खारा, मैं देकर फल फूल नहारा, फिर भी तूने मुझको मारा, मैं देकर फल फूल नहारा। और अंतिम स्पर्श इस गीत का, तेरे कारण स्वच्छ रहेगी मेरे कार, वृक्ष कह रहा है कि मेरे कारण स्वच्छ रहेगी दुनिया जिसे वायु कर...

देना, सावधान तू अभी संभल जा, फिर ईश्वर को दोष न देना। मैं न रहा तो मिट जाएगा, मैं न रहा तो मिट जाएगा, जीवन से अनमोल सहारा मैं देकर फल फूल नहा।

0: नहारा, ये एक वृक्ष की चेतावनी मानव जाति के लिए है। तो ये रचना इसके बाद में एक विशेष जो हमारे जीवन में भारतीय संस्कृति जो है वो बड़ी विलक्षण है, और इस विलक्षण संस्कृति का एक अभिन्न अंग है भारतीय पत्नियां,
1: क्या बात है,
0: भारतीय नारियां। विदेशी और हमारे यहाँ की स्त्रियों में विशेष फर्क होता है। तो मैं कुछ इस प्रकार से एक चित्रण किया है, कविता का शीर्षक भी मैंने दिया एक भारतीय विशिष्ट पत्नी।
1: स्वागत है,
2: स्वागत है।
0: तो उसका मैं चित्रण कर रहा हूं। आपको घर में ऐसी हर घर में करीब करीब ये उदाहरण मिल जाएंगे। इसको बड़ा हल्के पन से लें, थोड़ा मनोविनोद के लिए इस गजल को लें।
1: स्वागत है।
0: आप पल पल कमाल करते हो, एक पुरुष गा रहा है, आप पल पल कमाल करते हो, जब भी मन हो बवाल करते हो, जब भी मन हो बवाल करते हो, बात करते हो आप भी तीखी, बात कर

शादी के बाद भी खुश हूँ, क्या मैं शादी के बाद भी खुश हूँ, कैसे कैसे सवाल करते हो, कैसे कैसे सवाल करते हो, आप पल पल कमाल करते हो, जब भी मन हो बवाल करते हो। अगला युग्म देखें।

0: मुस्कुराहट से आप रिश्ता बहाल करते हो, आप रिश्ता बहाल करते हो, आप पल पल कमाल करते हो। और अंतिम स्पर्श है,
1: स्वागत
0: सत्य उस वक्त पता चलता है, सत्य उस वक्त तो पता चलता है, प्यार जब अश्क बन निकलता है, प्यार जब अश्क बन निकलता है। झूठी नफरत से प्यार को ढकना, झूठी नफरत से प्यार

0: करते हो, जब भी मन हो बवाल करते हो। और मैं अपना अंतिम स्पर्श के रूप में एक गीत और, क्योंकि अभी देखा कि बादल ने अपनी वानगी दे दी है, तो उसको बादल से थोड़ी सी बात कर लें, मेघा से जरा बात कर लें, एक छोटा सा गीत प्रस्तुत है।
1: स्वागत।

धरती माँ का पावन आंचल, धरती माँ का पावन आंचल, बरस बरस कर झूम बदरवा झूम झूम झूम बदरवा झूम झूम झूम। बुला रही है पवन सहेली दो पल करवट खेली, बुला रही है पवन सहेली दो पल करवट खेली, चातक और चांद की सुन जा प्रेम कथा अलबेली, चातक और चांद की सुन जा प्रेम कथा अलबेली। पगले नाहक छोड़ गरजना, पगले नाहक छोड़ गरजना, इधर उधर मत घूम बदरवा झूम झूम झूम बदरवा झूम झूम झूम। धरती माँ का पावन आंचल, बरस बरस कर झूम बदरवा झूम झूम झूम बदरवा झूम झूम झूम। अगला बंदे देखें, आ भी जाओ प्रियवर कलियां तकती राह निरंतर, आ भी जाओ प्रियवर कलियां तकती राह निरंतर, मेहमा बन कर आजा प्यारे फूंक प्राण का मंत्र, अतिथि बन कर आजा प्यारे फूंक प्राण का मंत्र। लगे सूखने बगिया के, लगे सूखने बगिया के सारे पौधे मासूम बदरवा झूम झूम झूम बदरवा झूम झूम झूम। धरती माँ का पावन आंचल, बरस बरस कर झूम बदरवा झूम झूम झूम। और देखें, हम अपनी व्यथा बता रहे हैं बादल को, सर्दी

0: जन्म सार्थक कर दे अपना, धूम मचा दे धूम, बदरवा झूम झूम झूम, बदरवा झूम झूम झूम। अंतिम स्पर्श, तुझे देख प्रियतम से मिलने की उम्मीद जगी है, तुझे देख प्रियतम से मिलने की उम्मीद जगी है, तुझको छूने की अभिलाषा सचमुच प्रेम पगी है, तुझसे मिलने की को छूने की अभिलाषा सचमुच प्रेम पगी है। जाने कब तू भाग्य बदल दे, जाने कब तू भाग्य बदल दे, किसको क्या मालूम, बदरवा झूम झूम झूम, बदरवा झूम झूम झूम, माँ धरती का पावन आंचल बरस बरस कर चूम, बदरवा झूम झूम झूम, बदरवा झूम झूम झूम। ये बादल के स्वागत के लिए गीत था, और अब हम यही इस कार्यक्रम को, इस कवि गोष्ठी को समापन की ओर ले जाते हैं, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर। और इस कवि गोष्ठी के अंत में मैं अपने साथी धर्मेंद्र धीर और सुनीता शर्मा श्रुति और मैं स्वयं प्रवेंद्र पंडित आपसे क्षमा चाहते हैं किसी भी गलती के लिए, और भविष्य में किसी कार्यक्रम में इसी प्रकार आकाशवाणी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे कविताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मैं प्रवेंद्र पंडित अलवर राजस्थान से।
1: अभी आप आकाशवाणी के 90 वर्ष के अंतर्गत काव्य गोष्ठी

0: भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
1: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी आप लोग संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी

अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
5: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में

शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म में आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें। भरत व्यास के बोलों को सुरों में ढाला सतीश भाटिया ने।

0: वर्मा मलिक के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था, महेंद्र कपूर को आपने सुना, फिल्म थी दिल और मोहब्बत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: पाकीज़ा इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल थे, गुलाम मोहम्मद का संगीत था और यही थी आपके लिए इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम बस कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज बात एक ऐसी अदाकारा की जो अपने अंदाज से जितना लुभाती है उससे ज्यादा भाती है उनके फिटनेस की चमक। अपनी मौजूदगी से ही वो कर देती हैं पॉजिटिविटी की बौछार और दिल ये कह उठता है
1: चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।
0: जी हाँ, आज बात 3 दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी की।

0: शिल्पा शेट्टी, जिन्हें दुनिया भर में उनकी फिटनेस से तो पहचान मिली ही, साथ ही वो कई अलग अलग सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ी हुई हैं। वो न सिर्फ एक अभिनेत्री हैं, बल्कि फिटनेस गुरु, बिजनेस वुमन, सामाजिक कार्यों की बुलंद आवाज, एक बेहतरीन माँ और पत्नी हैं। शिल्पा जिस अंदाज में घर और बाहर के कामों में संतुलन रखती हैं, वो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। फिटनेस का आलम ये है कि उम्र के 5 दशक पार कर चुकी शिल्पा अपनी उम्र को मात देती नजर आती हैं।
1: दिल वालों के दिल का करार लूटने

जून 1975 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी अश्विनी शेट्टी, जिन्हें आज हम शिल्पा शेट्टी के नाम से जानते हैं। उनके पिता सुरेंद्र शेट्टी एक बिजनेसमैन थे और माँ सुनंदा शेट्टी अब

अपने समय की मशहूर मॉडल। अब आप ये सोचें कि शिल्पा को यहीं से फिल्म में जाने की प्रेरणा मिली, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुंबई में पढ़ाई कर रही शिल्पा तो अपने पिता के बिजनेस को संभालने की तैयारी में थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

स्कूल के दिनों में शिल्पा अपनी खूबसूरती को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एक रफ एंड टफ लड़की मानी जाती। अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कैप्टन शिल्पा शेट्टी खेल में खोई रहती। खेल के कारण फिटनेस का सिलसिला बचपन से ही साथ रहा। वही भरतनाट्यम में पारंगत हुई तो वो शुरू से ही डांस में भी अच्छी थी और इसके साथ ही शिल्पा कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। वैसे ध्यान दें तो ये सारी क्वालिटी एक फिल्मी हीरो की छवि दिखाती है। शायद यही कारण है कि शिल्पा भी अपनी अनुशासन से भरी लाइफ के चलते कई लोगों के लिए एक हीरो ही हैं।

भले ही शिल्पा खुद को हीरोइन की तरह नहीं देख रही थी, लेकिन 10वीं पास करते ही मॉडलिंग करने लगी थी। वो कई कमर्शियल्स में भी नजर आती हैं और इस तरह उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म गाता रहे मेरा दिल, जो कभी भी दर्शकों के सामने आई ही नहीं, बल्कि पहली बार शिल्पा बड़े पर्दे पर नजर आई शाहरुख खान के साथ। 1993 की ये फिल्म थी बाजीगर।

बाजीगर में शिल्पा के काम को सराहा गया, उन्हें काम भी मिलने लगा, लेकिन बाजीगर जैसी सफलता के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान आई उनकी बहुचर्चित फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ शिल्पा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म में शिल्पा ने एक डांसर की भूमिका निभाई थी और उनके इस किरदार और उनके इस डांस ने उन्हें एक अलग पहचान दी। शिल्पा के करियर में उन्हें ऐसे कई किरदार और गीत मिले जिनमें उन्हें डांस करते देखा गया और ये गीत हिट भी हुए। कुछ फिल्मों में तो शिल्पा सिर्फ एक गाने के लिए भी आईं, क्योंकि वो डांस उनके ऊपर ही जचता है, फिर वो शूल का गीत हो या दोस्ताना का अंदाज। शिल्पा को आज भी उनके इन डांस नंबर्स के लिए याद किया जाता है।

शिल्पा ने एक्टिंग के गुर सेट पर ही अपने अलग अलग किरदारों को निभाते हुए सीखे, पर एक समय के बाद शिल्पा एक ही तरह के किरदार करते हुए थक चुकी थीं। वो कुछ अलग करना चाहती थीं। शिल्पा जो चाहती थीं, वो उन्होंने कर भी दिखाया। फिल्म जानवर में जब शिल्पा ने ममता ओबेरॉय के रूप में एक माँ के अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख बयां किया, तो दर्शकों की आंखों में आंसू और आलोचकों के मुँह से वाहवाही साथ ही निकले।

रिश्ते फिल्म में शिल्पा का मछुआरन का किरदार उनके डायलॉग्स के अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से एक अलग रंगत में ढल गया। वैसे शिल्पा इससे पहले ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी थी। साल 2000 में आई उनकी फिल्म धड़कन। इस फिल्म में जिस तरह बेबसी, लाचारी, प्यार, जुनून जैसे भावों को शिल्पा ने अपने अभिनय से दर्शकों तक पहुँचाया, लोगों को पर्दे पर शिल्पा नहीं नजर आई तो सिर्फ अंजलि।

शिल्पा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपना नाम कमा रही थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में उनके काम को सराहा गया। वैसे यहाँ ये बताते चलें कि शिल्पा 6 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा मराठी, गुजराती, तेलुगु और तमिल भी बोल लेती हैं। उनके अभिनय की भाषा दर्शकों के दिलों तक पहुँचती है।

शिल्पा की हर फिल्म की चर्चा करना तो संभव नहीं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी बात करना जरूरी है। साल 2004 में आई शिल्पा की वो फिल्म जिसे आज तक देश विदेश में सराहा जाता है, ये फिल्म थी फिर मिलेंगे। शिल्पा ने तमन्ना साहनी के किरदार के जरिए एक HIV पॉजिटिव लड़की के जीवन को लोगों के सामने रखा। ये फिल्म नहीं बल्कि लोगों को एड्स पीड़ितों की परेशानियों और एक समाज के तौर पर हमारे कर्तव्यों को उजागर करने की पहल थी। इस फिल्म से मिली सारी रकम शिल्पा ने HIV पॉजिटिव पीड़ितों के लिए दान दे दी। फिर मिलेंगे को शिल्पा अपनी बेहतरीन फिल्मों में से एक मानती हैं।

शिल्पा का अभिनय लगातार निखर रहा था। वो खुद को एक एक्टर के तौर पर पसंद करने लगी थी। कन्नड़ फिल्म ऑटो शंकर में शिल्पा ने नेगेटिव किरदार यूं निभाया कि उन्हें साउथ के गब्बर सिंह की उपाधि मिल गई। शिल्पा की बेहतरीन एक्टिंग का एक और नजारा मिला। फिल्म थी लाइफ इन अ मेट्रो। शिल्पा को शिखा घोष के किरदार में देख न जाने कितनी महिलाओं ने उसमें अपनी कहानी देख ली।

शिल्पा ने अपनी माँ सुनंदा द्वारा निर्मित इंडियन चाइनीज फिल्म द डिजायर में भी एक रोमांचक भूमिका निभाई। वैसे शिल्पा शेट्टी टीवी में आने वाली शुरुआती फिल्मी सितारों में शामिल हैं। वहीं उन्होंने यूट्यूब ऐप डीवीडी वगैरह की ओर भी पहले कदम बढ़ाया। इसी तरह का एक और जोखिम भरा काम उन्होंने किया जब साल 2007 में वो ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई। पूरे समय कैमरों के सामने रहना आसान नहीं होता। शिल्पा के सामने कई तरह की परेशानियां भी आईं, लेकिन वो डटी रहीं। विनम्रता, सहनशीलता और दृढ़ता को उन्होंने अपना साथी बना लिया और इस शो की विनर बनी।

दोस्ताना के इस गाने में शिल्पा थिरकती नजर आईं और फिल्म के स्टार्स से ज्यादा शिल्पा की चर्चा हुई। शिल्पा अपने फिल्मी पर्दे से निकलकर टीवी की दुनिया में छाने लगी। वो कई रियलिटी शोज का हिस्सा बन रही थी, फिल्मों से एक दूरी सी बनती जा रही थी और यही वो समय था जब शिल्पा ने लंबे समय से दोस्त रहे राज कुंद्रा से शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद साल 2012 में शिल्पा पहली बार माँ बनी। उनके बेटे वियान भी अपनी माँ की तरह ही फिटनेस और मार्शल आर्ट के दीवाने हैं। साल 2020 में शिल्पा सरोगेसी के जरिए दोबारा माँ बनी अपनी बेटी समीशा की। शिल्पा अपने बच्चों को हर त्योहार का आनंद दिलाती हैं। एक माँ के तौर पर उनका ये अंदाज भी फैंस को पसंद आता।

लंबे समय तक फिल्मी पर्दे से गायब रहने के बाद शिल्पा ने बतौर निर्माता ढिस्क्याओं फिल्म से वापसी की और अभिनेत्री की तरह नजर आई फिल्म निकम्मा और सुखी में। इन फिल्मों में शिल्पा ने कुछ हट के किरदार निभाए। रोहित शेट्टी की ओटीटी सीरीज पुलिस फोर्स में भी शिल्पा के किरदार तारा शेट्टी को सराहना मिली, लेकिन हंगामा 2 में शिल्पा का वही अंदाज देखने मिला।

जो उनकी फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में दिखा था। यहाँ भी शिल्पा एक बार फिर अपने उसी सुपरहिट गाने पर झूमती नजर आईं, साथ थे जावेद जाफरी के बेटे निजान जाफरी।

वहीं शिल्पा को स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया और यहां उन्होंने चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड अपने नाम किया। शिल्पा अपने ग्लैमरस अंदाज, कातिलाना मुस्कान और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। इन बातों के लिए भी उन्हें कई बार अलग अलग लिस्ट में टॉप पे रखा जाता रहा है।

मानना ही होगा कि शिल्पा के एक्टिंग और किरदारों से ज्यादा उनके फिटनेस, ध्यान और योग की बातें चर्चा में रहती हैं। उनका मानना है कि योग और ध्यान के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शिल्पा शेट्टी का मूल मंत्र ही फिटनेस है और ये बात उनकी दिनचर्या का भी हिस्सा है। पॉजिटिविटी, परिवार का साथ, योग, ध्यान, संस्कृति से जुड़ाव, जीवन को सरल रखना जैसे कई ऐसे गुण शिल्पा शेट्टी में नजर आते हैं जो उनके फैंस भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं। ये बातें उन्हें एक रोल मॉडल तो बनाती ही है, साथ ही लोग खुद को उनसे जुड़ा महसूस करते हैं। शिल्पा इसी तरह सरल और सहज बनी रहें और आने वाले कई दशकों तक लोगों को फिटनेस और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करती रहें। हमारी यही

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था 3 दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: छाया गीत के सुनने वालों को जयंत का नमस्कार।
1: पतंगा पतंगा जल जल जल मर जाए ये दीपक।

पतंगा जल जल जल मर जाए ये दीपक।

तो चाहता है छोड़ कर के दुनिया बस जाए तेरी आंखों में। महकते दिल का अरमा यही है कि बस के रह जाए तेरी।

ये शोखी और नजाकत और शरारत भरी निगाहें शर्मा भी रही है। कह दो कि मोहब्बत है, खोया खोया सा रहता है ये दिल, धड़कता है तो बस तेरे ख्यालों में। कह दो कि

रहेंगे साथ जिंदगी भर, इस दिल का यही वादा है। दे देंगे जान तुम पर ओ दिलबर, अब तो यही इरादा।

0: घेर लिया है तेरी महकती जुल्फों ने, लिपटा हूं तो लिपटा ही रहूंगा, मिला है सुकून तेरे पलकों की छांव में, जो बैठा हूं तो बैठा ही रहूंगा।
1: हाँ तो

बहके तो भंवरा वहीं जाए, दिल का पपीहा तेरे ही पास आए। मेरा दिल है वो पागल पंछी के

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य

0: से बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है, ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं और इसी के साथ हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होगी। सवेरे 5:51 पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।